0: तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
2: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com।
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
5: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
8: हाँ।
7: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ।
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ।
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
7: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
7: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
11: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
12: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैकजैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
13: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

0: में जो सिंगर है उसे रिहाना बोलो, बिंदास बोलो बिंदास, बिंदास बोलो, बिंदास बोलो बिंदास।
1: 7 बजने के बाद भी बिंदास की आवाज क्यों आ रही है भैया? क्योंकि इप्पी जी थोड़ी सी लेट है जी, लिटिल मिसअप विद हर कार, बट शी इज फाइन एंड शी इज गोना बी जॉइनिंग अस लेटर। आई एम गोना बी विद यू टिल 7:30। आज आधा घंटा और मैं आपके साथ बताऊंगा जी, कुछ अपनी बातें करूंगा, कुछ आपकी सुनूंगा, एंड दैट्स हाउ वी विल स्पेंड दिस नेक्स्ट आवर। यू नो लोग कहते हैं मोबाइल आने से बहुत नुकसान हो गया। आई एग्री यार, मोबाइल आने से बहुत नुकसान हो गया है, लोग सारा दिन उसी पे बैठे रहते हैं, पर कम से कम एक अच्छी बात हुई है। अच्छी बात ये हुई है जनाब कि पहले जब फोन नहीं थे तो लोग कान नाक समझ रहे हो ना, उंगली, अब उंगली सिर्फ फोन स्क्रॉल चक दे फट्टे, समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ एवरीथिंग पीपल्स।

0: If you're living in Frisco and you're looking for a PCP, yani ke your physician, then get with Texas Primary Care. For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community, and they are growing with a brand new name and a second Frisco location. Absolutely, you heard that right. They're now with Lenoxi Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxi Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. Even X-ray, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services are all under one roof. You heard that right. एक ही जगह पे urgent care, primary care, in-house lab testing, X-rays, CT scans, and many diagnostics are available. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. And the best part is you don't need an appointment. Walk in anytime. What you have to Google is Texas Primary Care in Frisco or Lenoxi Medical. That's Lunoxy Medical. I'm going to play a game with you all. एक गेम खेलना चाहता हूँ आप लोगों के साथ. ऐसी बस फालतू में मजा आ रहा है मुझे गेम खेलने का, तो मैंने कहा चलो आपके साथ एक गेम खेलते हैं. कई वर्ड्स होते हैं जिसमें एक अल्फाबेट साइलेंट होता है, जैसे कि लिसन में टी साइलेंट होता है, सैमन में एल साइमन साइलेंट होता है, कासल में टी साइलेंट होता है, रिसीप्ट में पी साइलेंट होता है. तो मैं आपसे कुछ वर्ड्स पूछूंगा, आपने बताना है उसमें कौन साइलेंट है. सिंपल सी बात है. खेलना चाहते हो तो कॉल करेंगे मेरे स्टूडियो के नंबर पे 972-235-5555, नंबर टू द स्टूडियो.
1: सुर में गाना.
0: So if you think you have a fast brain, you can tell me which letters are alphabets are silent in a word, then you'll come play this with me. जैसे कि scissor में C silent होता है, और कौन से words हैं जो मैं आपके साथ खेलूंगा आपने मुझे बताना है. Good evening, Fanasia, who's this?
2: Hello, my name is Virender.
0: Virender?
2: जी.
0: Virender भाई कैसे हो?
2: बढ़िया सर, आप बोलिए.
0: Virender भाई हम ठीक ठाक हैं. Virender भाई ready to play?
2: Yes, sir.
0: मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा आपको, उसमें बताना है कि कौन सा अल्फाबेट साइलेंट है. ठीक है. सुनामी में क्या साइलेंट होता
2: है?
0: ऑनेस्ट में क्या साइलेंट होता
2: है? Can you repeat the word? Sorry.
0: ऑनेस्ट में क्या साइलेंट होता
2: है? H.
0: साइकोलॉजी में?
2: P.
0: नाइफ में क्या साइलेंट होता है?
2: K.
0: वाइफ में क्या साइलेंट होता है?
2: हस्बैंड.
0: Ha ha!

Shahid Kapoor, Rashmika, and Nal Sigichi Kriti lighting this song on fire with their appearances and Pritham's music. Got this to be a track that Cocktail 2 never thought to go crazy, but it did, man. You're listening to an Evening Drive Time show only on Fun Asia. Covering in for Ippy the Hippie. I'm going to be with you till about 7:30 this evening. अगर आप ये सोच रहे हैं कि उम्र लंबी होनी चाहिए, उम्र लंबी होनी चाहिए, मैं इस गाने के बाद बताता हूँ उम्र लंबी होनी चाहिए या नहीं, क्या चक्कर है इसका. जस्ट राइट आफ्टर दिस वन.

From a movie that is definitely there in one of the best movies list for a lot of people, Zindagi Na Milegi Dobara, which is definitely a fact, man. जो पल निकल जाता है वो दोबारा नहीं आएगा. जिंदगी तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी उम्र लंबी हो जाए तो मैं एक फैक्चुअल बात बताता हूँ आपको. देखो, पहली बात तो ये है कि जो सोच रहे हैं कि उम्र लंबी हो जाए उनको शादीशुदा नहीं होना चाहिए. ओके, अब आपने अगर उम्र लंबी करने की सोची है तो एक काम कीजिए, आप लोग शादी कर लीजिए. अब आप पूछोगे उससे क्या होगा. देखो जी, शादी करने से दो फायदे होते हैं. एक तो लंबी जिंदगी की चाहत का सवाल जो है वो ख़त्म हो जाता है, और दूसरा जो बची कुची जिंदगी है ना बड़े भाई, उसको आप समझ लेते हैं कि यही लंबी है मेरे लिए. सिंपल सोल्यूशन है, टेंशन मत लिया करो. ब्रेक के बाद आया, अडियोस करने. स्टे ट्यून्ड.

मुझको मिला नहीं, पर मैंने देखा जरूर कि एक कबूतर ना बहुत ऊंचा उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा, बहुत उड़ा, मतलब बहुत ऊपर उड़ा। खैर छोड़ो, अब मुझे नजर नहीं आ रहा, वैसे भी घर जाने का टाइम हो गया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो आप लोगों को कैसे पता लगता कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। विद दैट इट इज अडियोस, गुड नाइट, बाय बाय, मी इज डन फ्रॉम द स्टूडियो। मेरा टाइम हो गया जी आज के लिए, एक्चुअली ओवर टाइम काटा है जी आज, बिकॉज इपी द हैप्पी हैज अ लिटिल इशू, बट शी इज गोना बी जॉइनिंग यू वेरी सून। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अगर ऊपर वाले ने दिया जी एक और दिन कल सुबह, तो एंड आई विल बी सीइंग यू टुमारो इवनिंग फ्रॉम 5 to 7 ऑन योर फेवरेट स्टेशन फन एशिया रेडियो। जाते जाते हमेशा कहता हूँ, और जिन्होंने नहीं सुना आज सुन लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। आई नो कि आप कहते हो यार आई वॉन्ट टेक केयर ऑफ माई वाइफ, आई वॉन्ट टेक केयर ऑफ माई किड्स, दे आर द वर्ल्ड टू मी, बट डू यू नो योर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू, यू आर द एक्सिस ऑफ दैट वर्ल्ड। और अगर आप खुश नहीं होंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, यू आर नॉट जॉयफुल फ्रॉम द इनसाइड, यू नॉट गोना बी एबल टू पास एनी पॉजिटिव वाइब्स और जॉय टू एनी बडी अराउंड यू। तो अगर आप सड़े हुए होंगे, बच्चों से रूडली बात होगी, बीवी से रूडली बात होगी, परेशानियाँ होंगी, घर वालों की केमिस्ट्री नहीं समझ आएगी, सो द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज लव योर सेल्फ मैन। सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ एक्चुअली इज द पर्सन दैट यू सी इन द मिरर, मैन और अ वुमन, बिकॉज यू आर द एपिसेंटर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। आपके टेस्ट बड्स अगर अच्छे हैं, आपको खाना पसंद आएगा, आपको अगर म्यूजिक अच्छा लगता है तो कान अच्छे होंगे तो सुनने में मजा आएगा। इसी तरह योर वेल बींग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिवटल पार्ट ऑफ योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो मेक श्योर यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। विद दैट इट इज गुड नाइट।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं।

0: डूइंग।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
0: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
6: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25+ dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 PM to 3 PM. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: मैं शादी करूँगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूँगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूँ।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: ना सब और प्राइस
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं ही तो।
12: ओचो,
13: होको,
12: ओचो,
13: होको,
12: ओचो,
13: इट्स होको।
10: अरे बस भी करो यार।
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
6: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: कितने आदमी थे?
1: सर्कल पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
10: फ्लोर्स क्लीन
11: चेक,
10: विंडोज क्लीन
11: चेक,
10: किचन क्लीन
11: चेक,
10: एयर डक्ट्स क्लीन।
11: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
12: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
13: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
14: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
15: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
14: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
15: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
13: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री लीव।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
1: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
1: No, not another restaurant again.
2: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
0: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
3: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM. Oh, son.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers, 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: जीनी हुकम मेरी अखल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
2: मिराज लाउंज चलिए मेरी अखल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
2: नो प्रॉब्लम अखा, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
1: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी

0: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
1: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
0: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
2: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
3: बेटा, 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 9726188555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: कारण
1: लगे रहो।
2: I love you।
3: अनंत तेरा फोन आया यार।
1: औरा
3: चल चल।

The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

0: Masti Magic 24/7 only on 104.9 FM.
1: That's right. Pump it up.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग। This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: अजी सुनते हो?
4: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
5: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
6: अजी सुनते हो? सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में? सब संभाल लेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: जिद शर्दे हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी तो तू कर लेगा।
3: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं ज्योंदी करूंगा हॉकी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: मूंज उठी शहनाई।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Sathiya कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
3: तुमसे मिलके दिल का है
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
4: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
5: And you're listening to Fun Asia Radio.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: प्रवीण, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
2: सर। वो
1: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: मैं साबित कर सकती हूँ।

0: बताइए कहाँ ले चले?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटना साहब ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं इसलिए रुकते नहीं ना।

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवी को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: Jay Kumar, let's take a selfie now.
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बल्ला, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो ये गिरा लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं?
1: दिया। मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: परेशानी,
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा,
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता।
1: हाँ, लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा तो एड़ी से सर तक दर्द होगा।
2: या यू टॉकिंग नॉट राइट एंड बॉडी पेन फ्रॉम टो ट्रक टू हेडलाइट।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
4: Satya! कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
8: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 shows True Payment presents Sonu Nigam live in Dallas. Hi.
5: तुमसे मिलके दिल का है।
4: Saturday, September 26th, 8:30 PM onwards at the Credit Union of Texas Event Center, Allen.
2: Tickets available at Ticketmaster. For more info, call 855-360-SHOWS. Exclusive media partner, Fun Asia Network.
6: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।
2: अजमोतला

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: बैंजो।

0: के दिल कर चूचे चूचे चे के दिल कर चूचे चूचे चे।
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
2: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया।
1: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
0: कहाँ?
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
6: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
0: फ्लोर्स क्लीन
11: चेक,
0: विंडोज क्लीन
11: चेक,
0: किचन क्लीन
11: चेक,
0: एयर डक्ट्स क्लीन।
11: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
12: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: एजी सुनते हो?
1: जी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, एजी FinTechs. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस. एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
6: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: The Voice of Shan is taking us to the end of this hour of the program. Hope you enjoyed it. I do have another happening hour coming up for you. Stay with me right here on the Fun Asia Network at 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Documents ya parcel bhejni hai?
8: Haan.
7: Ghar relocate karni hai?
8: Haan.
7: Gaadi bhi transport karna hai?
8: Haan, bhai, haan.
7: To phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide ko call kar.
9: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein. Trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
10: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
11: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
12: जिंदगी एक रंगमंच है
13: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
14: भूख लगी
15: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
16: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
15: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर यू गो टू Page 3 हब 121 मैकिनी
17: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
18: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
19: जीनी हुकम मेरे आका
20: हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
19: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
20: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
19: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
20: और एंटरटेनमेंट
19: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
20: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
19: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
21: तुझे देखा तो ये जाना सनम
22: 90s
8: का रोमांस 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो गाइए झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने लिमिटेड सीट्स फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप.
0: Ladies and gentlemen, welcome to this hour of the program. If you are just joining us, we'll get you caught up quickly. On this lovely Thursday morning, it's the 3rd of September today, and I want to give you all the good news that we are not getting into the triple digits today. How about 90s? A cool front headed our way, and the bare remnants of Tropical Storm Edward, that leftover swirl may hit us. Maybe from the east, some of us might see a few showers. Just want to remind you, the thing that falls from the sky, it's rain, and we haven't seen it in a while, but maybe some of you will see a few drops today, more towards the eastern part of Highway 75. Welcome to this hour of the program.

0: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: ना सब और प्राइस
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ अगस्त, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं हीरोइन हूं।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे यार, घर मिल गया.
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
0: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen

0: Let's change the hour. It's 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
5: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
6: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
5: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy।
6: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: Beta, 95% aaye?
14: Haan, mummy.
13: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
15: मेरा?
13: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
15: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
16: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag aur upar se ye stress.
17: Arey relax, you need a cool therapy.
16: Therapy? Wo to bahut mehengi hai.
17: Nahi, cool matlab cool cha therapy.
16: Ye kya hota?
17: Simple, Chandigarh Bites Express in Allen.
18: Chandigarh Bites Express, serving some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
5: And now at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available.
19: Sadia!
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: इश्क इश्क है। Welcome to this hour of the program. We're going to get you caught up very fast here. On this beautiful Thursday morning, ladies and gentlemen, it's the 3rd of September today. And the best news I have is that we have a cold front. We are not going to be in the triples today. We should be in the 90s. And the bare remnants of Tropical Storm Edward, that leftover swirl that's heading our way, might give us a few showers. You remember showers that fall from the sky? That's called rain. Yeah, well, it's a farewell tour of Edward, and maybe the eastern parts of us here in the Metroplex, probably east of 75, might see a few showers.

0: on. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: have the recent diplomatic developments suggesting a renewed push to ease tensions between Pakistan and Afghanistan, according to the Foreign Office in Islamabad. And we see many progress-related issues there that are being made. That's all I have in the news for you today.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: जिंदगी एक रंगमंच है,
1: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
8: Visit www.sanadainc.com today.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Ocho.
12: Hoko.
11: Ocho.
12: Hoko.
11: Ocho.
12: It's Hoko.
13: अरे बस भी करो यार।
12: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
13: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है। एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
14: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
0: देयर वाज एन इंग्लिश नेविगेटर, हिज नेम वाज हेनरी हडसन। In a quest for a passage to India on behalf of the Dutch East India Company, he sailed into the harbor of what is present-day New York City and up that river that now bears his name, the Hudson River.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
7: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
8: 90s ke gaane sirf hits nahi, hamari yaadein hain. Aur ab wo legendary awaaz aa rahi hai live to Plano. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
9: Ladies and gentlemen, welcome to this hour of the program on this lovely Thursday morning. It's the 3rd of September and we do not have triple digit temperatures today. Looks like we have a cold wave on us and we are going to be in the 90s. And maybe some of you on the eastern part of 75 may get a few, you know, those drops from the skies that we call showers or rain. Looks like some of us might be showered with some beautiful drops of rain. Maybe sometime later today. I'm not promising, but maybe some of us. The remnants of Tropical Storm Edward in this leftover spiral on its farewell tour through our area.

0: Holy Shravan celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
3: क्या मतलब?
4: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
4: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
5: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: ये तारा वो तारा हर तारा.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
7: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
12: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
11: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
13: तुमसे मिलके दिल का है।
12: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
11: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

Hello, namaste and good morning Dallas. This is your host Ayushi और Fun Asia 104.9 FM में आपका स्वागत है और हम पहुंच गए हैं स्टूडियो आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ प्यारे और खूबसूरत गानों के साथ. डालस का मौसम बदल रहा है फाइनली आज सुबह उस चिलचिलाती कड़कड़ाती धूप से बचकर एक अच्छे मौसम का ड्राइव लेते हुए हम स्टूडियो पहुंचे हैं एंड दैट फील सो नाइस. एंड ऐसा ही फील आया कुछ इस गाने की तरफ. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मौसम की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं अब.

0: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
1: लिया।
0: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
1: नहीं आया।
0: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani.

Your dream home may be closer than you think with Dream Home Mortgage since 1998. Dream Home Mortgage has helped families across the country turn home ownership into reality with personalized mortgage solutions and smooth, stress-free process. Licensed in all 50 states, their experienced team is committed to finding the right loan option tailored to your needs. Whether you're buying your first home, upgrading or refinancing, start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com for more details. Dream Home Mortgage, making dreams happen. Dream homes happen, yeah. So, agar aap घर लेना चाह रहे हैं तो जरूर इनको कांटेक्ट करें. नंबर फिर से बता रही हूँ, 972-245-5626. तो चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं. एंड आज एक और सेलिब्रिटी का जन्मदिन है. वी टॉकिंग अबाउट विवेक ओबेरॉय. सो विशिंग हिम अ हैप्पी बर्थडे. और उनकी ही फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना आप लोगों के लिए ये रहा.

For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community, now growing with a brand new name and a second Frisco location. Introducing Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya, Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan Med Spa services, all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m., वॉक इन एनी टाइम, अपॉइंटमेंट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. और फिलहाल आज 3 सितंबर बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है. एक हमारी शबनम जी का जन्मदिन है, देन विवेक ओबेरॉय है एंड शक्ति कपूर का भी बर्थडे आज ही होता है. लेकिन बात करते हैं विवेक ओबेरॉय की. इनकी जो बॉलीवुड की जो जर्नी रही है वो बहुत ही जितनी ज़्यादा उन्होंने फिल्में नहीं की हैं उससे ज़्यादा शायद उन्होंने कंट्रोवर्सी की है. लेकिन हर समय चर्चा में रहे हैं. सितंबर 23rd एंड ही मेड हिज डेब्यू इन द ईयर 2002 विथ द फिल्म कंपनी. तो चलिए कंपनी फिल्म का जल्दी से आपको एक गाना सुना देते हैं और उसके बाद शक्ति कपूर के बारे में बात करेंगे. आओ

0: राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी का गाना जिसमें है विवेक ओबेरॉय एंड दिस वाज हिज डेब्यू फिल्म एंड उनके लिए इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर भी मिला था एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर एक्चुअली. भले ही कॉन्ट्रोवर्सीज ने उनका साथ नहीं छोड़ा बट जब वो आए थे तो सबको ये लग रहा था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है एंड ही विल डू क्वाइट ग्रेट ऑपोजिट टू हिज फादर सुरेश ओबेरॉय जिनको हमने हमेशा एज विलन ही देखा है. सो वील टॉक मोर अबाउट इट. फॉर नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. वापस आइए और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा. फन एशिया 104.9.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: FM. 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
8: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
9: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी.
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Weekend ka plan, abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
15: Zindagi ke kai rang. Fanisha Radio ke sang.
0: Fun Asia 104.9 FM पे आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और मैं आपके साथ आज दोपहर 1:30 बजे तक हूँ. आपको एंटरटेन करूंगी कुछ प्यारे और सुंदर गानों के साथ, कुछ बातों के साथ, बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे हम. एंड थैंक यू फॉर योर कॉल्स. सुबह सुबह ही आपकी कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं एंड दैट मेक्स अ डे. एंड आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ आवर लिसनर्स जो कि मुझे लगता है इस टाइम पे मोस्टली मीठू को सुनती हैं, एंड शी जस्ट शेयर अ स्मॉल स्टोरी फॉर टुडे कि आज वो सुबह सुबह कई स्पॉट्स पे गई थी जहाँ पे उनको काम था, एंड वन ऑफ द स्पॉट्स जहाँ पे वो गई अपनी दवाइयाँ लेने, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग जिनसे वो मिली, एंड उसके बाद से तुरंत ही वो कहीं और गई, तो जिस बंदी से मिली तो सारा डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो गया. सो बेसिकली व्हाट शी मेंट टू से वाज कि एक बंदी की ऑरा से जो आपके आसपास है, उसकी पॉजिटिवनेस से या उसकी वाइब से कैसे आपका दिन बदल सकता है, आपका मूड चेंज हो सकता है, चाहे किसी ने कितना भी मूड खराब करने का कोशिश किया हो, बट एक इंसान अगर अच्छा मिल जाए ना, या आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, दैट पॉजिटिव एनर्जी अफेक्ट्स यू अ लॉट, आपका पूरा दिन उसी हिसाब से जाता है. सो या दैट वॉज अ रियली गुड थॉट जो उन्होंने हमसे शेयर किया, और हम साथ ही आज विवेक ओबेरॉय का जन्मदिन भी मना रहे हैं. अगर आप उनके कोई गाने सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करिए 9722355555 पे. आपकी होस्ट आयुषी आपका इंतजार कर रही है. फिलहाल मुझे जिस गाने की फरमाइश आई है, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम द मूवी साथिया. सो साथिया उस टाइम पर आई थी 2002 में, जब 2002 के बाद दैट वॉज हिज सेकेंड फिल्म, एंड रानी मुखर्जी एक वेल स्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी उस टाइम तक, सुपरस्टार्स मतलब थी फीमेल एक्ट्रेसेस में, एंड उस समय विवेक ओबेरॉय एज अ लीड उनके साथ आ रहे थे. और आई स्टिल रिमेंबर द रिलीज, जब वो हम दम वाला जो सीन आता था जिसमें ही इज़ ऑन अ बाइक विद हेडफोन्स ऑन एंड ही इज़ इन्जॉइंग दैट हम दम वाला बीट, हम भी उसके साथ थिरक रहे होते थे. और ये फिल्म बहुत ही पसंद आई थी सबको, सुपर डुपर हिट हुई थी उस समय में. सो हिज दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम साथिया. With the hip, the hop once again in effect. Feel the constant slamming of the bass line. Never mess around with

0: सॉरी
1: उधर नहीं जा सकते, एक्सीडेंट हुआ। यू टर्न करो और वापस जाओ। चलो चलो चलो।
0: ओके सर,
1: एम्बुलेंस निकालो सर।

ओके सो इट वॉज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दम, और ये था हमारी कॉलर की फरमाइश पे. आज हम कुछ गाने बजा रहे हैं विवेक ओबरॉय की फिल्म से. तो अगर आपके पास भी कोई गाना ऐसा हो जो आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे, जो कि है 9722355555. हियर इज दिस अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम हिज मूवी.

डैलस, द वेट इज ओवर. पीएमजी ड्वेल्स अब फ्रिस्को में खुल चुका है और अपने 60 साल का 60 ईयर्स का ज्वेलरी एक्सीलेंस लेकर के और इनकी जो टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप है ये लेकर के अब ये फ्रिस्को में आ गए हैं. सो यू कैन एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara, PMJ is the name that you trust for that has been trusted by generations. So you can visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं और हम विवेक ओबरॉय के बारे में बात करें थोड़ी बहुत. आज उनका जन्मदिन है. सो विवेक ओबरॉय ने हर तरह का कैरेक्टर निभाया है. अगर एक रोमांटिक हीरो की बात करो जिसमें वो साथिया में आए, अदर या फिर दम में एक्शन हीरो या फिर उनका कॉमिक टाइमिंग, सब कुछ मज़ेदार रहा है. सो राइट आफ्टर साथिया इन 2004 केम द मूवी मस्ती और उसके बाद से मस्ती की बहुत सारी सीरीज बनती गई. मस्ती, ग्रैंड मस्ती और मस्ती 4 भी आ रही है शायद. सो वो जो ट्रायो वहाँ पे क्रिएट हुआ विवेक ओबरॉय, आफ्ताब शब्दसानी और रितेश देशमुख का, वो आज तक चलते आ रहा है. इट्स बीन मोर देन 20 ईयर्स नाउ बट वी स्टिल इन्जॉय सीइंग दैट ट्रायो डूइंग ऑल द मस्ती ऑन बिग स्क्रीन एज वेल. सो हाउ कैन वी मिस दैट सॉन्ग? हियर्स दिस मजेदार सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मस्ती.

अगर किसी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं या ग्रेजुएशन की कर रहे हैं, हाउस वार्मिंग की कर रहे हैं, किसी भी तरह की सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे हैं ना, देन यू नीड टू नो वन नेम विच इज़ वेनिसा इवेंट्स दैट ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर. वेन्यू हो, डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स है, फोटोग्राफी हो, हॉस्पिटैलिटी हो, केटरिंग हो, जो कि बसेरा ग्रैंड करता है, तो प्लीज़ आप हरि बसेरा को कॉल करिए 4694428770 पे. वेनिसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. दिस इज द नेम दैट यू नीड टू नो. आई विल रिपीट द नंबर, इट्स 4694428770. और हम विवेक ओबरॉय की बात कर रहे हैं. बड़ा ही उथल पुथल वाला करियर रहा है इनका, लेकिन शुरू में जो भी अच्छी फिल्म्स करी हैं इन्होंने, जैसे मस्ती हो गई, युवा, ओमकारा, जिसका परफॉर्मेंस वॉज क्रिटिकली एक्लेम्ड, और शूट आउट एट लोखंडवाला, ये बहुत ही अच्छी फिल्म्स रही हैं और लगातार हर साल इन्होंने एक हिट दी है. एंड देन इट केम अ डिफिकल्ट फेज फॉर हिम इन बॉलीवुड, जहाँ पर इनका यू नो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई. सल्लू भाई के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुई, एंड देन there was a silence in his career, जहाँ पे वो शांत हो गए. लेकिन there was a comeback also. पहले तो उनका businessman side भी है. He has built a substantially identity outside acting, including ventures in real estate and business with remaining. He has also been involved in philanthropic activities. Vivek Oberoi के career से क्या सीख मिलती है? मुझे लगता है ये मिलती है कि रुकना नहीं चाहिए. We shouldn't stop controversies या problems या issues आते रहेंगे, तो उनकी तरह हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और चीज़ों को ट्राई करना चाहिए. एंड आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इन द रीसेंट वीडियोस, रील्स और एवरीवेयर, ही हैज़ बीन डूइंग क्वाइट वेल इन हिज रियल स्टेट बिजनेस एज वेल. और वापस से उनका कमबैक भी हो गया है भाई. इंटरेस्टिंगली वो अब वेब सीरीज प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं, एंड देयर इज़ वन शो कॉल्ड इनसाइड एज जिसपे वो आने वाले हैं. सो या ही एंड ग्रैंड मस्ती फिर से आ रही है, तो येस ही इज डूइंग हिज कमबैक. और आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है हमारे स्टूडियो से. तो आप भी उनके पसंद, अगर उनकी मूवी से कोई गाने बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए. फिलहाल जो मेरे पास फरमाइश आई है वो है फिल्म युवा से, उसका एक गाना हमारी कॉलर सुनना चाहती हैं, तो आपके लिए ये रहा वो गाना.

Yummy.

0: just keep dancing.
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
3: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
4: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023-2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
5: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है।
7: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
4: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
8: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
11: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
3: 104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
12: Non-stop entertainment at Fun Asia 104.9 FM. और स्वागत है आपका फिर से एक बार। आपके होस्ट आयुषी आपको यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए बैठी है और आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार, हमने आज विवेक ओब्रॉय का बर्थडे सेलिब्रेट किया और अब बारी है उस इंसान की जो कि हीरो नहीं था, जो कि हीरो बन के बॉलीवुड में नहीं आया। मतलब कोशिश तो उसने की पर वो बन गए इस सदी के सबसे बड़े विलन, और उनका जब भी नाम आता है तो लोग उनको उनके विलन वाले किरदार से ही पहचानते हैं। मैं बात कर रही हूँ सुनील सिकंदर लाल कपूर की, जो कि शक्ति कपूर के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनको ये नाम एक्टर सुनील दत्त साहब ने दिया था और इसी नाम से आज वो पहचाने जाते हैं, कई बार उनके विलन वाले किरदार के लिए और कई बार उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए। तो 700 से ज़्यादा फिल्में करी हैं उन्होंने एंड हिज करियर इज़ नाउ स्पैनिंग फॉर मोर देन 4 decades। ओ दैट्स लॉन्ग जर्नी. और हमेशा हम लोग यू नो एक्टर्स और बड़े बड़े सुपरस्टार्स की बात करते हैं, पर ये हम सुपर विलन्स को भूल जाते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और हर दूसरी फिल्म में ये किसी न किसी किरदार में हमें दिखते थे. एंड हिज विलन वाला जर्नी यू नो लाइक स्टार्टेड और मे बी वहाँ से बूम पे आया जब इन्होंने फिरोज खान की कुर्बानी 1980 में की. एंड वहाँ से इनको विलन रोल्स और कॉमिक रोल्स के लिए ज़्यादा पूछा जाने लगा. वैसे इन्होंने कोशिश की थी अच्छा बच्चा बनने की. एक फिल्म आई थी सत्ते पे सत्ता, उसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन के भाई का किरदार निभाया था. उनके सात भाई थे और वो लोग देवर सेवन ब्रदर्स, उसमें से एक शक्ति कपूर साहब भी थे. अच्छा वहाँ पे करने की कोशिश की थी पर अच्छे रोल्स ना इनको सूट नहीं करते. या तो वो ये राजा बाबू के नंदू की तरह अच्छे लगते हैं या फिर विलन बन के. तो चलिए उनका भी एक गाना सुनी लेते हैं आज.

शक्ति कपूर और गोविंदा है इस गाने में। फिल्म का नाम है राजा बाबू नंदू सबका बंधु। ये वाला डायलॉग तो याद ही होगा आप लोगों को। और आज बिना कभी अगर नाड़ा लटकता हुआ दिख जाए तो सबसे पहले यही निकलता है मुंह से, क्यों नंदू बन के घूम रहे हो? तो इस तरह से कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते थे इनके अराउंड, जो कि आज भी हमारे साथ हमारे जहन में ना इस तरह से जिंदा है कि सबसे पहले यही कहा जाता है कोई भी दिख जाए विद द नाड़ा। एनीवे, शक्ति कपूर ने 700 से ज़्यादा फिल्में की हैं और 80 से लेकर 90 तक के दशक में बॉलीवुड्स में बहुत सारे इन्होंने आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं। कभी विलन बने, कभी कॉमेडियन बने, कभी ओवर द टॉप कैरेक्टर प्ले किया। उन्होंने हर रोल को यूनिक स्टाइल में प्ले किया है। और हम लोग हमेशा एक्टर्स की बात करते हैं, बट ये जो विलन्स हैं या फिर कॉमेडियंस हैं जिन्होंने 80

ओवर द टॉप कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने, हर रोल को यूनिक स्टाइल में प्ले किया है। और हम लोग हमेशा एक्टर्स की बात करते हैं, बट ये जो विलन्स हैं या फिर कॉमेडियंस हैं जिन्होंने 80s और 90s की फिल्म को एक अलग ही एसेंस दिया था, यू नो मूवी में ये कैरेक्टर्स हम देखते थे कि कैसे, कब शक्ति कपूर आएंगे या फिर कब जॉनी लीवर आएंगे या कादर खान साहब आएंगे। तो ये सारी चीज़ें 90s के दौर की फिल्मों में बड़ी स्पेशल हुआ करती थी। स्पेशली जब शक्ति कपूर की बात कर रहे हैं, देन हाउ कैन वी मिस की उनका हमेशा डेविड धवन साहब की फिल्म में विद गोविंदा वो हमेशा रहे हैं साइड रोल में। और अगर 90s की एक और फेमस फिल्म की बात करें तो अंदाज अपना अपना थी, जिसमें ये क्राइम मास्टर गोगो के नाम से आए थे। और वो डायलॉग मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को याद होगा, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स यार उस टाइम पे जो बनते थे ना, तो हैट्स ऑफ टू द डायलॉग राइटर्स एंड टू द एक्टर्स, उन्होंने इस तरह से ये डायलॉग्स बनाए और हमारे सामने लेके आए कि हम आज तक ये सारे डायलॉग मार ही रहे हैं। मतलब इसीलिए हम 90s वाले जो मिलेनियल्स हैं ना, मज़ेदार हैं, इनकी हमारे टाइम की मूवीज़ भी मज़ेदार थी। एनी वेज, टेकिंग यू टूवर्ड्स वन मोर सॉन्ग फ्रॉम शक्ति कपूर मूवी, जिसमें कादर खान साहब और शक्ति कपूर जो हैं वो लीड रोल में आए हैं, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी।

तो ये था एक और गाना शक्ति कपूर की फिल्म से. आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं हम यहाँ पर. एंड कॉमेडियन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस ऑफ बॉलीवुड और 4 डिकेड्स बॉलीवुड में पूरे कर चुके हैं. विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. वक्त हो रहा है आपकी फरमाइशों का. बहुत सारी फरमाइशें आ चुकी हैं. नाउ आई विल प्ले ऑल योर रिक्वेस्ट. यू कैन कॉल मी ऑन 9722355555. स्टूडियो का नंबर है. लेकिन उसके पहले डैलस वासियों, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट इज़ हियर इन डैलस. एंड ये एक अनफॉरगेटेबल नाइट होने वाला है म्यूज़िक का, क्योंकि सोनू निगम जहाँ पे हो वहाँ ऐसा ना हो सकता है. सो इट्स द टाइम टू एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, जो कि सैटरडे सितंबर 26 को है. सैटरडे सितंबर 26 दैट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. तो भाई आपके फेवरेट गाने और एक आइकॉनिक आवाज, सब कुछ आपको मिलेगा लाइव. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर हैं हम लोग फनेशिया. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. एक गाना जो बहुत देर से मैंने लाइन अप करके रखा हुआ है उसको प्ले करती हूँ. हमारे कॉलर ने, ही वॉज द फर्स्ट कॉलर ऑफ द डे, बट क्योंकि मेरे शो का थीम कुछ और था, मैंने ये गाना लाइन अप करके रखा हुआ है. दिस वन्स फॉर यू सर.

तो भाई वक्त हो रहा है लंच का, तो आपको जल्दी से बता देते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप कबाब्स के शौकीन हैं या फिर आपको चाट पसंद है, फ्यूजन बाइट्स पसंद है, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स चाहिए, तो आपको जाना चाहिए Page 3 Eatery। इफ़ यू हैव एन स्टिल एक्सपीरियंस Page 3 Eatery एट Hub 121, यू आर सीरियसली मिसिंग आउट। दिस इज़ वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर। ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो, डेट नाइट हो, या दोस्तों के साथ फूडी मीटअप हो, Page 3 ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स। सो प्लीज़ Page 3 ज़रूर जाइए और उनका खाना ट्राई किए। मैंने खुद किया है एंड दे हैव अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग फूड। Page 3 Eatery एट Hub 121 एंड एक्सप्लोर मोर एट Page 3 Eatery.com। अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। इसकी भी फरमाइश हमारे कॉलर ने की थी एंड विवेक ओबरॉय की फिल्म का गाना है ये। सो हियर्स दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: बोली फाइव स्टार में.
1: So Dallas, get ready for a night filled with timeless melodies, unforgettable romance and pure 90s nostalgia. The voice behind some of the Bollywood's most iconic love songs is coming live to Plano. Experience Kumar Sanu live in concert. Unforgettable 90s on September 11th at the brand new Robinson Fine Arts in Plano. Sing along to the songs you grew up with, experience and experience the magic of an era that still lives in our hearts. Limited seats are available with free parking and exclusive meet and greet options. Book your tickets today at eventbrite.com or call 214-869-2668 for more information. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group. तो भाई इस इंफॉर्मेशन के साथ एक गिव अवे भी है. जी हाँ, तो मैं वो गिव अवे करूंगी इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. आई प्ले अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड देन यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द मूवी एंड देन यू गेट अ टिकट फॉर दिस शो. कुमार सानू के शो के लिए एक गिव अवे टिकट मिलने वाला है आपको. तो चलिए तैयार रहिए इसके लिए. हम ब्रेक के बाद ये करेंगे. स्टूडियो का नंबर बता दे रही हूँ, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. बहुत सारी बातों पे हमने आज चर्चा की, बर्थडेज मनाए, बातें की, आपकी बातें सुनी एंड कुछ इंस्पिरेशनल बातें सुनी जिनको सुन करके बड़ा अच्छा लगा. फिलहाल अगला गाना जो है ना, ये मेरे फेवरेट कपल के लिए जो गाड़ी में आते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन करते हैं. हर बार जनाब खुद से अपनी वाइफ के लिए गाना डेडिकेट करवाते हैं, कभी बेगम साहिबा शोहर के लिए गाना डेडिकेट करवाती हैं, लेकिन इस बार मैं आप दोनों के लिए गाना डेडिकेट करने वाली हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद. तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए फन एशिया 104.9 एफएम. मैं आपकी होस्ट आयुषी आपका यहाँ पर बैठ के इंतजार करूंगी. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Heere moti, main na chahu.
10: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
11: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
12: लैपटॉप में.
11: इन्वेस्टमेंट?
12: गूगल ड्राइव.
11: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
12: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
11: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
13: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
14: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
13: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
15: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
16: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभाल लेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
13: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
17: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड, एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ, विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
10: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
13: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
18: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
19: हाँ।
18: घर रिलोकेट करनी है?
19: हाँ।
18: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
19: हाँ भाई हाँ।
18: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
20: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
21: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
22: Tracks that put you on the right track.
1: Welcome back after this very short commercial break. आप सुन रहे हैं अपने होस्ट आयुषी को, और ब्रेक पे जाने के पहले मैंने एक गाना डेडिकेट किया है अपने एक रेगुलर कॉलर को। रोज़ कॉल करते हैं दोनों मुझे और बिल्कुल एक्साइटेड होके कॉल करते हैं, एंड इतनी एक्साइटमेंट के साथ तो मेरा दिन बन जाता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए ये गाना प्ले करती हूँ आप दोनों के लिए। दिस इज़ फॉर यू सोहेल एंड मरियम।

परदेस फिल्म का ये गाना था और आवाज़ है सानू कुमार सानू की, क्या बोल रही हूँ मैं, कुमार सानू साहब की आवाज़ है ये, वो बहुत ही प्यारा सा गाना है. एंड आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस मूवी एंड स्पेशली दिस सॉन्ग. तो शांति से सुकून से कोने में बैठ जाओ और इस गाने को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, रिपीट पे लगा दो. 90s के गानों की बात ही कुछ और है, हमेशा बोलती हूँ मैं. फिलहाल वक्त हो रहा है हमारे गिव अवे का, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ब्रेक से वापस आते ही करूँगी. सो मैं एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा गाना प्ले करने वाली हूँ कुमार सानू जी की आवाज़ में, और आपको बस करना ये है कि फिल्म का नाम बताना है. एंड इफ यू गिव मी द राइट आंसर, इफ यू द फर्स्ट कॉलर एंड गिव मी द राइट आंसर, देन यू गेट अ गिव अवे विच इज उनके शो का टिकट. जी हाँ, अनफॉर्गेटेबल 90s लेकर के आ रहे हैं कुमार सानू साहब डैलस में, तो तैयार हो जाइए. डेट है 11 सितंबर, ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. पार्किंग फ्री है एंड एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट भी है, सीट्स और लिमिटेड सीट्स हैं. और आपको जल्दी से कॉल करना है 2148692668 पे अगर आपको टिकट चाहिए तो. एंड eventbrite.com पे भी टिकट्स अवेलेबल हैं. इट्स प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप. ये रहा वो गाना जो आपको सुनना है और फिर कॉल करना है. गाना सुनने के पहले कॉल मत करना और फिर मुझे बताना है कि कौन सी फिल्म का गाना है ये. एंड देन हियर यू गो.

एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर अविनाश रॉय के लिए जिन्होंने जीता है ये गिव अवे। एंड यस द मूवी मूवी का नाम है विजय पथ। अजय देवगन और तब्बू है इस फिल्म में, आवाज है अलका याग्निक और कुमार सानू साहब की। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। अगला गाना लाइनअप करके रखा है मैंने बहुत देर से, इसको लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी उर्फ बिहारी मॉम को। तो आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, बिहारी मॉम इन अमेरिका है मेरा हैंडल। और फिलहाल आपकी होस्ट आयुषी आपको एंटरटेन कर रही है कुछ बॉलीवुड के 90s और 2000s के गानों के साथ। अगर कोई फरमाइश हो तो प्लीज कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे, 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर।

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
1: ये क्या होता
2: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
5: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
8: उमर ख्वाजा.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम.

Passion Health, Primary Care, Insure, Home Loans and Omar Khwaja presents Make Your Ganesha with Phanesia Network. This Ganesh Chaturthi, children ages 5 to 10 can create their own clay Ganesha at a fun-filled workshop on Saturday, September 12th. Spots are limited, so register today at ganesha.phanesia.net. I repeat, it's Ganesha, Ganesha. .phanesia.net and tell your little artists creativity shine. तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. गणेशा बनवाइए अपने बच्चों से. 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए है ये इवेंट एंड आपको रजिस्टर करना है ganesha.phanesia.net पे एंड अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को उभरने दीजिए भाई, साथ में त्योहार को भी समझने दीजिए उनको. शो को आगे बढ़ाते हैं. मैं आपके साथ 1 घंटे और हूँ और आपको कुछ आपकी ही पसंद के गाने सुनाते रहूँगी. अभी हमारा लास्ट गिव अवे गया है अंकुर शर्मा को, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. So Ankur, you can collect your giveaway from Divibe Restaurant, which is located inside Foodistan in Aubrey. जिन लोगों ने कॉल किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, वी हैव अनदर गिव अवे कमिंग इन सम टाइम. सो बस सुनते रहिए फनेशिया, गिव अवेज मिलते रहेंगे आपको. ऐसे ही कॉल करते रहिए और हमारा साथ देते रहिए.

कॉल किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, वी हैव अनदर गिव अवे कमिंग इन सम टाइम. सो बस सुनते रहिए वनेशा, गिव अवेज मिलते रहेंगे आपको. ऐसे ही कॉल करते रहिए और हमारा साथ देते रहिए. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं. बहुत ही प्यारा सा 90s का एक नंबर लाइन अप करके रखा है मैंने.

और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा।

जा पूरा करते हाँ, पलक फड़के आए किफिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमान, कातिल अदा।

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: आमिर खान का था ये गाना और सोच रही हूँ एक और गाना आमिर खान का ही प्ले करती हूँ, बिकॉज 90s के गानों का जो ये सिलसिला चल रहा है उसमें ये गाना प्ले करना तो बनता है। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलती है पब्लिक?

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
8: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
9: कितने आदमी थे?
10: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फन एशिया सुनता है।
11: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे और आधे घंटे और आपके साथ हूँ, आपकी फरमाइशें ले रही हूँ और बहुत सारे गानों की लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर है मेरे पास। बट अगर कोई और गाना आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। और आपको याद दिला दूँ, आपको पता ही होगा कि कल जन्माष्टमी है और जो लोग भी ये त्यौहार मनाते हैं वो आज से ही तैयारियों में जुट जाएंगे। मुझे भी यहाँ से जाने के बाद अपनी सारी शॉपिंग करनी है और नंदलाला कन्हैया का बर्थडे मनाना है, तो आप भी बर्थडे मनाइए, उनका त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करिए और फिलहाल हमारे साथ फनी शो पे गाने सुनते रहिए।

इफ यू आर ऑन H1B F1L1 या फिर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं आप, एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं US में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, तो आपको मदद कर सकते हैं सीमा मेहता के लॉ ऑफिसर्स से. जी हाँ, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू इन दिस. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB5 इन्वेस्टर वीजा, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. For more information on the EB5 investor visa program, you can call or email info@seemamehtalawfirm.com. I repeat, that's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta.

DDLJ का ये ट्रैक था आपके लिए, तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले टेक्सास बिजनेस ओनर्स के लिए न्यूज है ये, सो अटेंशन। लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तो भाई मेरे पास कुछ 15 मिनट और बचे हैं और आपकी सारी फरमाइशों को पूरा करने की कोशिश करूंगी, बिकॉज इस सेगमेंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पसंद के गाने बजा रहे हैं। तो कॉल करना मत भूलिए स्टूडियो के नंबर पे, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। और मेरे बाद सुनहरी किरण आने वाली हैं अपना प्यारा सा शो लेकर के आपके लिए। और क्या, और बस ये गाना, अगला जिसकी फरमाइश आई है मुझे वो सुनाती हूँ आपको।

Fun Pizza Kitchen has launched a brand new Mexican inspired pizza lineup and these aren't just pizzas. ये तो full on flavor है भाई. जी हाँ, from fresh fiesta veggie to fiery polo loco, the seafood packed Senor Cameron, every bite is bold, exciting and made to impress. तो भैया Fun Pizza Kitchen जाइए और ये जो नया टेस्ट का जो तड़का इन्होंने दिया है उसको खुद से ट्राई करिए. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. और चलिए इस बात पे आपको फनीशा की तरफ से फन पिज्जा की तरफ से एक गिव अवे दे देते हैं. जी हाँ, यू कैन विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस फिल्म का नाम बताना है. 90 के दशक की ये फिल्म है, बहुत ही फेमस सा गाना है. बस आपको मुझे कॉल करके फिल्म का नाम बताना है. हियर इज द सॉन्ग एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल्स राइट आफ्टर दिस. मूवी का नाम बताना है आपको.

फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है एंड वी हैव आवर विनर मिस्टर यशराज चावला। तालियां हो जाएं इनके लिए। तो इनको मिलेगा फनीशा किचन के फन पिज्जा, आई एम सॉरी मुझे क्या हो गया, फन पिज्जा किचन के तरफ से एक $10 का गिफ्ट कार्ड जो कि ये कलेक्ट कर सकते हैं फन पिज्जा किचन फ्रिस्को लोकेशन से, सिर्फ और सिर्फ फ्रिस्को लोकेशन से। तो जस्ट गो एंड कलेक्ट द गिफ्ट कार्ड एंड एंजॉय द अमेजिंग पिज्जाज। और देखिए अब घड़ी में बज गए हैं 1:23। मेरे जाने का वक्त हो रहा है, सुनहरी किरण के आने का टाइम हो रहा है, तो इसी तरह से फनीशा आप कॉल करके हमारा साथ देते रहिए और हमारे हमसे फरमाइशें करते रहिए, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग कॉल करते हैं तो आपके गानों को ही सुन के आपकी कॉल्स से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। सो थैंक यू टू ऑल माई लिसनर्स जो कि जिन्होंने कॉल किया। एंड आज के लिए मैं विदा लेना चाहूँगी आप लोगों से। फिलहाल एक दो गाने और लाइन अप हैं जो मैं प्ले करती हूँ आप लोगों के लिए।

0: Your host Ayushi is signing off for the day. Thank you and keep listening to Phanasia. आपका दिन अच्छा हो, enjoy करिए और अभी किरण आकर के आपको entertain करेंगी अगले कुछ घंटे और thank you and bye-bye.
1: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
2: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
3: डील कहाँ?
2: सिंपल पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
3: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
4: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
6: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
11: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
15: तुमसे मिलके दिल का है.
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

A very, very warm welcome to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूँ किरण आपके साथ. This is your extended version of Afternoon Drive Time with सुनहरी किरण. फिलहाल सिर्फ सुनहरी किरण लेकर हाजिर हुई हूँ. वैसे आप मुझे सुनते हैं 2:30 से 5 बजे तक, लेकिन आज जी मेरे पास आपके साथ एक घंटा और है, यानी कि 1:30 से ऑनवर्ड्स अब मैं 5 बजे तक आपके साथ रहूंगी. और बहुत कुछ है आज के शो में आपके लिए लाइंड अप. एज ऑलवेज आई bring you something new, something exciting every day at Sunehri Kiran. And right now, kuch mausam bada khubsurat ho raha hai. Bade dino baad kuch badalon ka sa sama hai. Ab dua hai ki ye jo aaye hain badal to ye baras ke bhi jaye, because is waqt hum sab ko bahut shadeed zarurat hai kuch pani ki. Jo tha main dekh rahi hun, ghaas jal gayi hai, paude jal gaye hain, bahut kuch apne mere apne ghar mein hum extra pani de de ke bhi pareshan ho gaye hain. Lekin kya kare ji, is waqt situation aisi hai. So let's hope and pray everyone कि ये बादल थोड़ा सा बरसे और थोड़ा सा हमारे जो लॉन्स हैं और गार्डन्स हैं और जो हमारे जखायर हैं उनमें पानी दोबारा से जमा हो. विद दैट थॉट, विशिंग यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. और इस गाने के साथ हम शुरुआत करते हैं, फिर मैं वापस आकर आपको बताऊंगी कि आज मेरे पास आपके लिए 5 बजे तक क्या क्या लाइंड अप है.

और अगर इस मौसम में आपका कुछ खूबसूरत और मजे का खाने का दिल कर रहा है जो कि बिल्कुल घर जैसा टेस्ट करे, तो फिर तंदूरी फ्लेम जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है इज द प्लेस फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल यू स्पाइस लवर्स. तंदूरी प्लेटर्स हैं उनके पास, रिच करीज हैं, तमाम आपके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि स्मोकी कबाब्स और वेलवेटी करीज और फ्रेश हॉट नान, मतलब जो भी आपका दिल कर रहा है वो आपको मिलेगा तंदूरी फ्लेम में. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल घर जैसे जायके के साथ. सो आइए तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड एंड एंजॉय फॉर योरसेल्फ. वहां बैठ के खाइए, टेक अवे कीजिए. केटरिंग अगर आपकी कोई मेहमान आ रहा है या आपने कोई दावत करनी है तो बड़े जबरदस्त केटरिंग मेन्यूज है उनका. सो चेक देम आउट. दिस इज तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड.

और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है जी, या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए अफोर्डेबल प्राइमरी केयर लेके आया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. एंड व्हाट आर दे ऑफरिंग यू? दे आर ऑफरिंग यू $85 अ मंथ में दिस पैशन हेल्थ डायरेक्ट प्लान. इससे क्या होगा, योर मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट, साथ ही साथ फॉलो अप इन प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है, टेली हेल्थ व्हेन अप्रोप्रिएट, केयर कोऑर्डिनेशन होगी, प्लस 20% सेविंग्स मिलेंगी आपको ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एज वेल एज डायग्नोस्टिक सर्विसेज. सो दिस इज अ प्रोग्राम दैट दे हैव इंट्रोड्यूस फॉर यू. $85 अ मंथ में पैशन हेल्थ डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन गेट. दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, ये आपको बताते चले. एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट दिस, गिव पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर अ कॉल. दैट नंबर इज 214-666-6259 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए passionhealthphysicians.com. और पैशन हेल्थ इज एक्सट्रीमली, एज द नेम सजेस्ट, दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट योर हेल्थ. दे आर कमिंग अप विद दीज प्लान सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन टेकिंग केयर ऑफ योर वेल बीइंग. गिव देम अ कॉल.

आखिरी अलविदा टेकन फ्रॉम शूट आउट एट लोखंडवाला. सुन रहे हैं आप कुछ मजे मजे के मिक्स्ड गाने. और आपको बताऊं जी कि 2:30 बजे से यूजुअली आप मुझे सुनते हैं, लेकिन आज एक घंटा आपके साथ और मिला है, तो कुछ प्यारे प्यारे गाने आपके लिए प्ले कर रही हूं. अगर आप कुछ सुनना खास चाहते हैं 90s ऑनवर्ड्स, तो 9722355555 इज ऑलवेज ओपन, द फोन लाइन आर ऑलवेज ओपन फॉर यू. अच्छा, अगर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ जी कि अगर आपका बच्चा इज गोइंग फ्रॉम 3rd grade through 5th grade, to Next Gen Speakers Academy can help them build the communication and leadership skills that they will use for a lifetime. Ji haan, this online program is designed and created by experienced coaches Sunhi Simon Santiago and Audra Langston, jinhone mentor kiya hai debate champions ko aur valedictorians, saath hi saath Ivy League graduates ko. Aur this program is designed to help your young minds grow into confident leaders. To agar aapke zehen mein koi bhi sawal aaya hai is baat ko sunke, to aap nextgenspeakersacademy.com pe log on kar sakte hain. nextgenspeakersacademy.com या फिर आप उनकी वेबसाइट, उनको कॉल कर सकते हैं विद एनी क्वेश्चंस 214-724-2867 214-724-2867. जी हाँ, आज ही दीजिए अपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस सो दैट दे कैन लीड टुमारो, स्टार्टिंग टुडे विद नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
5: भूख लगी
6: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
15: हाँ।
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ।
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ।
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
17: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
18: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
19: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
20: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
21: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

0: जी हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी याद हमेशा हमारे साथ चलती है. आप सुन रहे हैं ये गाना, आप सुन रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट अशोक की तरफ से. और अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंश्योर होम लोन और साथ ही साथ उमर ख्वाजा, All three of them presents Make Your Ganesha with Fun Asia Network. जी हाँ, this Ganesh Chaturthi, children ages 5 to 12, उनको मौका मिलेगा to create their own clay Ganesha at a fun-filled workshop. और ये workshop कब हो रही है? This is happening on Saturday, September the 12th. तो around 9 दिन बाद ये workshop है जी. Spots limited हैं, so आज ही register कीजिए at ganesha.funasia.net. एक बार फिर इस एड्रेस को नोट कर लीजिए, ganesha.funasia.net. लेट योर लिटिल आर्टिस्ट क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल एंड शाइनी विद दिस ब्यूटिफुल थिंग दैट वी आर ब्रिंगिंग यू, मेक योर गणेश विद फनेशिया नेटवर्क, ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंश्योर होम लोन्स एंड उमर ख्वाजा. मरियम एंड सोहेल, दिस इज गोइंग आउट टू यू.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

एसपी बाला साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन। और एसपी बाला की आवाज़ जो है वो ऐसा लगता था जैसे सलमान खान के लिए ही बनी है, जैसे कि अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ यूं लगता था कि जैसे शाहरुख खान के लिए बनी है। इस तरह कुछ सिंगर्स मिल जाते हैं कुछ स्टार्स को जो कि बहुत एक्सक्लूसिव उनकी आवाज़ लगने लगती है। अच्छा जी, अब एक ऐसी आवाज़ का मैं तذکرہ करने वाली हूँ जो कि बॉलीवुड के आसमान पे सितारा नहीं सूरज बन के चमकते हैं। दिस इज सोनू निगम और सोनू निगम आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट। एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन, व्हेन इज इट कमिंग फॉर यू? सैटरडे सितंबर 26 को शाम 8:30 एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन में ये इवेंट आपके लिए आ रहा है। ऑफकोर्स सोनू निगम है तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऑल योर फेवरेट नंबर्स, कितने सारे सोनू निगम के गाने हैं जो कि मेरे और आपके हम सबके हैं फेवरेट और हमेशा हमारी फेवरेट की प्ले लिस्ट में मौजूद रहते हैं। टिकट्स आपके लिए अवेलेबल हैं टिकट मास्टर पे, तो ticketmaster.com पे लॉग ऑन कीजिए एंड गेट योर टिकट्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360-SHOWS 855-360-SHOWS। दिस इज रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फनेशिया नेटवर्क। अब सोनू निगम की बात हो रही है तो मैं इस गाने के साथ आगे बढ़ूंगी। दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी परिणीता।

लागा चुनरी में दाग से सुन रहे थे आप ये गाना। कुछ बड़े ही प्यारे गाने इस फिल्म में हमें सुनने को मिले, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और साथ ही साथ जया बच्चन। और स्टोरी वाज काइंड ऑफ डिफरेंट स्टोरी, एक लेकिन एक पुरानी फिल्म से कहते हैं कि इंस्पिरेशन ली थी इस फिल्म ने। बहरहाल मौसम बड़ा खूबसूरत है जी, और कुछ मज़े मज़े के गाने आपके लिए प्ले कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि आज जो ये बादल आए हैं ये थोड़ा थोड़ा, नॉट टू मच, वो कहते हैं ना अब्रे रहमत जो है वो अब्रे मुसीबत ना बन जाए, तो इसीलिए अब्रे रहमत की ही दुआ करनी चाहिए। अब्रे रहमत मतलब अच्छी बारिश की दुआ, तो अच्छी बारिश की हम दुआ कर रहे हैं कि ज़रा अच्छा प्लांट्स को पानी मिल जाए और जो जल रहा है घास वगैरह चारों तरफ जो जल रही है उसको थोड़ा सा राहत का सामान मिले। अच्छा जी, इसी के साथ अगला गाना लगा रही हूँ। सुरैया जी की रिक्वेस्ट पे इस गाने को प्ले किया जा रहा है। दिस इज डेफिनेटली, इस गाने की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक कुछ गाने होते हैं जो गाने खाली नहीं होते, दे आर अ फिलोसफी ऑफ लाइफ, एंड दिस सॉन्ग इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। शायर ने जब वो गाने लिखते हैं, वो जो लिरिसिस्ट पेन डाउन करते हैं उसे, तो ऐसी खूबसूरती से एक जिंदगी की फिलोसफी बयान कर देते हैं कि यू नो एक स्टेटमेंट और एक सिग्नेचर बन जाता है वो गाना। इसी तरह ये गाना है, दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी कल होना हो, और उसका टाइटल ट्रैक है ये, दिस इज कल होना हो। सुरैया जी, गोइंग आउट टू यू।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: एक और लड्डू ले लो।
4: थोड़ी और बिरयानी?
3: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
10: Dad, property papers kahan hain?
11: Laptop mein.
10: Investment?
11: Google Drive.
10: Insurance? Passwords?
11: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
10: Dad, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
2: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
12: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
2: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
18: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: जी हाँ, सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon. बहुत कुछ आपके लिए लाइंड अप है और आप जानते हैं ना कि आज है फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ और फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को आपके लिए स्पेशली आता है फूड जंक्शन. फूड जंक्शन में हम बात करते हैं एक शहर की, एक अलग मुल्क की, एक अलग शहर की, जिसमें जब हम एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो हमें वहां पे क्या खाना है, हमें वहां पे उनके लोकल फेवरेट्स क्या हैं, उनके देसी फेवरेट्स क्या हैं, उनके डिजर्ट स्पॉट्स क्या हैं, क्या क्या उनके डिजर्ट्स में मशहूर है, ये सारी चीजें और स्पेशली वेजिटेरियन ऑप्शंस भी आपकी रिक्वेस्ट पे ये भी एक सेगमेंट डालती हूँ, व्हाट आर द वेजिटेरियन ऑप्शंस बिकॉज इफ यू आर अ हार्डकोर वेजिटेरियन. तो ये तमाम चीजें बात करते हैं हम फूड जंक्शन में द फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ विच इज टुडे. बस अगले 5 से 10 मिनट में मैं शुरू करने वाली हूँ फूड जंक्शन और आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत सारे मजे मजे के खाने पीने की बातें. लेकिन फिलहाल आपके लिए आया है एक गिव अवे और वो गिव अवे है जी कुमार सानू साहब के कॉन्सर्ट का. जी हाँ, कुमार सानू लेकर आ रहे हैं अनफॉरगेटेबल 90s September 11th को at the brand new Robinson Fine Arts in Plano. और ये है जी एक बहुत ही मजे का माहौल होने वाला है. Sing along with the songs that you have grown up to, you have learned to love. जैसे मेरे लिए इनकी आवाज के गाने जो हैं, this is the definition of early Bollywood that I was learning and I was watching. आपके लिए कुमार सानू कौन है और क्या definition है उनकी, ये तो आप definitely ज्यादा बेहतर मुझसे जानते होंगे. मैं आपको ये बताऊं कि पार्किंग बिल्कुल फ्री है इस इवेंट की और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. सो आप चेकआउट कीजिए eventbrite.com पे लॉग ऑन करके कुमार सानू का टिकट खरीदिए, देखिए मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस आपको क्या मिल रही हैं और आप इंटरेस्टेड हैं. अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आपको एक नंबर दे रही हूं, नंबर पे कॉल करके सवाल के जवाब हासिल कर सकते हैं आप 214-869-2668 ये है नंबर. दिस इवेंट इज प्रेजेंटेड टू यू बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप. और अब लेकर आई हूं आपके लिए एक टिकट गिव अवे ऑफ कुमार सानूज दिस कॉन्सर्ट हैपनिंग ऑन सितंबर 11th. तो जी टिकट गिव अवे के लिए ऑब्वियसली कुमार सानू का ही कोई गाना प्ले करने वाली हूं और आपसे उसी के मुतालिक सवाल करने वाली हूं. ये जो गाना अब आप सुनेंगे मतलब इसका आपने मुझे ये बताना है कि गाना कौन सी मूवी से लिया गया है. ये एक ऐसी मूवी है जिसने कुमार सानू साहब की करियर की दिशा बदल दी, दैट इट जस्ट कंप्लीटली चेंज द इंटायर बोर्ड गेम फॉर दिस मैन. ये गाना कौन सी मूवी से लिया गया है और इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे, क्योंकि जाहिर है कुमार सानू की आवाज तो थी मगर कुछ म्यूजिक डायरेक्शन को भी हमें, कंपोजर को भी थोड़ा सा जान पहचान लेना चाहिए. सो म्यूजिक कंपोजर का इस गाने का नाम बताइए और कौन सी मूवी से लिया गया था जिसके लिए कुमार सानू को मिला था इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

कुमार सानू का एक टिकट आया था और उन्हीं की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे। और सवाल भी यही था कि इस मूवी का जिसके लिए ये गाने का जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता, आपको बताना है कौन सी मूवी से लिया गया है एंड हु वाज दैट ब्यूटीफुल म्यूजिक कंपोजर जिसने हमें ऐसी कॉम्पोजिशन दी और ऐसा गाना दिया। तो फिल्म थी ऑफकोर्स आशिकी और म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण ने दिया था हमें ये गाना जो कि कुमार सानू ने बना दिया एब्सोल्युटली टाइमलेस। और हमारे आज के विनर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर कॉल्स, सुदीप्तो, वानी, जलपा, तृप्ति, इंदु, और भी फोन लाइंस अब बज हो रही हैं, लेकिन जी कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है, इसी गाने की लेंथ तक थी हमारी कॉन्टेस्ट फॉर दिस थिंग। और एज ऑलवेज आपका जिस सीक्वेंस में कॉल आती है वो मैं मैथ के फॉर्मूले में डालती हूँ, एक नंबर, जो नंबर विन होता है वही विनर होते हैं। और आज के जो हमारे लकी विनर हैं वो हैं सुदीप्तो दास। सुदीप्तो, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वेट फॉर दैट ईमेल और फॉर दैट इन्फॉर्मेशन दैट विल कम टू यू रिगार्डिंग हाउ यू कैन अवेल योर टिकट एंड एंजॉय दिस कुमार सानूज लाइव कॉन्सर्ट हैपनिंग ऑन सितंबर 11th। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर पार्टिसिपेशन। इट रियली रियली मैटर्स टू मी कि आप टाइम निकालते हैं, कॉल करते हैं। कुमार सानू के अगले शोज में, जितने भी मेरे शोज हैं, जब तक कि शो नहीं हो जाता उनका, कोशिश करूंगी आपके लिए कोई ना कोई कुमार सानू साहब का शो का टिकट जरूर लेके आऊं। आज नहीं तो कल आएगा, आपकी बारी जरूर आएगी।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
1: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
4: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
5: कहाँ
7: फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी केटरिंग सर्विसेज प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
8: फूडिस्तान इन ऑबरी मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट
9: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स को साउथ इंडियन अब जाए तो जाए कहाँ
10: सिंपल बसेरा ग्रैंड वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर
11: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा
10: यस रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलीशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं
11: वाओ ग्रेट फूड फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी
9: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड कम हंग्री लीव हैप्पी टुगेदर
12: ये तारा वो तारा हर तारा
6: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
0: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
15: तुमसे मिलके दिल का है
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
16: डैलस की धड़कन 104.9 FM फनेजिया रेडियो

0: वेलकम बैक 104.9 एफएम सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में. वक्त आ चला है फूड जंक्शन का. फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है टुडे जी, और आज हम करने वाले हैं फूड जंक्शन. वी आर गोइंग टू गो टू दिस ब्यूटीफुल सिटी और बताऊंगी आपको कि एज अ टूरिस्ट हमें वहां पे क्या खाना है. लेट्स वेलकम यू ऑन फूड जंक्शन राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून.
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी. मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी.

वेलकम टू अनदर डिलिशियस जर्नी ऑफ फूड जंक्शन. मैं हूं किरण और फूड जंक्शन पर हम सिर्फ खाना नहीं खाते, खाने का तस्करा नहीं करते, बल्कि हम खाने के थ्रू दुनिया को डिस्कवर करते हैं. कभी मैं आपको पेरिस लेके गई, पेरिस की गलियों में, कभी हम सिंगापुर में गए, कभी हम जो है वो रोम की गलियों में फिरे, लेकिन आज जो है वो हम जहाँ जा रहे हैं वो एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि दो कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं. ऑफ कोर्स आपने सुनते ही पहचान लिया होगा, टुडे फूड जंक्शन इज टेकिंग यू टू इस्तांबुल. एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ एशिया, बीच में द ब्यूटिफुल बॉस्फोरस, और हर तरफ खाना ही खाना. कबाब्स, बकलावा, सिमित, टर्किश कॉफी, टर्किश टी, मेजे, फ्रेश सी फूड, और वो स्ट्रीट फूड जो आपको बस स्मेल से ही अपनी तरफ खींच लेता है. सो वी आर गोइंग टू इस्तांबुल. इस्तांबुल्स फूड कल्चर रिफ्लेक्ट्स टर्किश एंड ऑटोमन कलिनरी ट्रेडिशंस अलोंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटीज जिन्होंने वहां पे एक जेनरेशन नहीं कई जेनरेशन गुजारी हैं, और तब मिला है मुझे और आपको वो टर्किश खाना.

इस्तांबुल को समझने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है उसकी कुजीन को समझना. जी हाँ, बिकॉज फूड हेयर इजंट जस्ट अबाउट हंगर. यहाँ पे खाना इज अबाउट फैमिली, इट इज अबाउट हॉस्पिटैलिटी, इट इज अबाउट ट्रेडिशन, कॉन्वर्सेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट बात शेयरिंग. तो आज का ये जो हम दो घंटे फूड जंक्शन कर रही हूँ मैं आपके साथ, आप मेरे साथ ट्रैवल करेंगे इस्तांबुल की स्ट्रीट्स पर. हम जाएंगे बहुत सारी ऐसी गलियों में जो इस्तांबुल की बहुत मशहूर है. अच्छा, यहाँ पे अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी किसी चीज़ को लेके गलत हो जाए तो प्लीज़ बेयर विद मी, और आप फ़ोन करके मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज मेरी लैंग्वेज वो नहीं है. तो कहीं ना कहीं जैसे इमिनोयू या फिर काराकोए या फिर सुल्तान अहमद या फिर कादिको, बालत, बसीकता, ये सारी वो जगहें हैं. ग्रैंड बाजार, स्पाइस बाजार, ये वो जगहें हैं जहाँ मैं आज आपको लेके जाऊँगी और हम डिस्कवर करेंगे वॉट टू ईट, वेयर टू ईट, वॉट टू ट्राई और क्या हमें बिल्कुल मिस नहीं करना एज अ टूरिस्ट. और अगर आपको इस सारी जर्नी के दौरान सुनते सुनते भूख लगा है तो यही मेरा मकसद है. डोंट ब्लेम मी फॉर दैट. जल्दी से कुछ खा लीजिए ताकि आपको बहुत ज्यादा भूख ना लगे इस खूबसूरत जर्नी के दौरान जो हम करेंगे इस्तांबुल के खाने की.

इस्तांबुल का नाम सुनते ही कितने ही इमेजेस हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि ब्लू मॉस्क, हाया सोफिया, बॉस्फोरस, गुलाटा टावर, टर्किश बाजार और ऑब्वियसली खाना. लेकिन इस्तांबुल की जो फूड स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक सिंपल क्वेश्चन से, व्हाई इज इस्तांबुल्स फूड सो डाइवर्स. सो वेल, फॉर दैट आंसर आप को इस सारे एपिसोड को सुनना पड़ेगा और बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ. तो बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाई इस्तांबुल इज कंसिडर्ड अ फूड पैराडाइज. तो इस्तांबुल की जो ज्योग्राफी है वो उसकी कुजीन को स्पेशल बनाती है, क्योंकि आप एक ही सिटी में हैं, मतलब देखिए, लेकिन आपको मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंस भी मिल रहा है, ब्लैक सी इन्फ्लुएंस भी मिल रहा है, बाल्कन फ्लेवर्स भी मिल रहे हैं, मिडल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस भी आपको मिल रहा है, और ऑटोमन पैलेस कुजीन की लेगेसी तो खैर है ही वहां पर आपके साथ. दैट्स वाई इस्तांबुल मीन्स, या इस्तांबुल में खाना जो है वो कभी भी बोरिंग नहीं होता. आप एक दिन कबाब खा सकते हैं, दूसरे दिन सी फूड खा सकते हैं, फिर मेजे, फिर उनका ब्रेकफास्ट जो बहुत ही मशहूर है, अभी आपको उसके बारे में बताऊंगी, उसके बाद डिजर्ट्स, बकलावाज आर यू नो एवरीबडीज फेवरेट. और एक इंटरेस्टिंग थिंग, इस्तांबुल का जो खाना है वो सिर्फ रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता, बल्कि जो स्ट्रीट्स हैं वो इटसेल्फ किचन की तरह ऑपरेट करती हैं. ऑफिशियल इस्तांबुल सोर्सेज ये बताती हैं कि सिमित जो है, या फिर रोस्टेड चेस्टनट, या फिर कॉर्न, लोकमा, पिकल्स एंड चिकन राइस आर अमंगस्ट द सिटीज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रीट फूड्स. तो इनको उनका मतलब खासा माना जाता है. आप मतलब सोचिए कि आप फेरी पकड़ कर कहीं जा रहे हैं, तो मार्केट जा रहे हैं, तो आपको रोस्टेड चेस्टनट्स कहीं नज़र आ गए तो वो खाइए, इमिनोयू जा रहे हैं तो फिर बालिक एक मिक खाइए, या फिर किसी कॉर्नर पर खड़े हैं तो और कुछ नहीं तो टर्किश कॉफ़ी ही पी लीजिए. यही है टर्किश फूड का मज़ा.

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट है तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. यू हैव टू डील विद द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द इंश्योरेंस कंपनीज, सो मच दैट यू हैव टू डील विद अलॉन्ग विद योर ओन वेल बींग एंड हेल्थ. तो अटर्नी उमर ख्वाजा को दे दीजिए ये सारी टेंशन, बिकॉज अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम विल नॉट ओनली फाइट योर केस फॉर यू, दे विल गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और जो बेहतरीन बात है वो ये कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते. सो गिव अटर्नी उमर ख्वाजा अ कॉल फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. देर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग विद देम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड दे विल टेल यू एंड गाइड यू स्टेप बाय स्टेप. दैट नंबर इज 4693005046. उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज अटर्नी उमर omar.com. अच्छा जी, बैक टू इस्तांबुल. और हम अपने इस सेगमेंट का आगाज कर रहे हैं बात करने से द आइकॉनिक सिमित की. अभी जो है सिमित क्या है, आप इसे टर्किश बेगल कह सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली सिमित को सिर्फ बेगल कहना थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा क्योंकि इट इज़ क्वाइट लाइट, क्रिस्पियर होता है, सेसमी सीड से कवर होता है. और आपके हाथ में जब वार्म सिमित होता है तो मतलब इट्स लाइक अ ट्रीट. बिल्कुल इट्स नो वेयर कंपेयर टू बेगल, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड, सुपर सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड, और साथ में हो एक टर्किश टी का कप हाथ में, तो फिर तो परफेक्शन एट इट्स बेस्ट. अच्छा, एक फैक्ट आपको बताती हूँ कि इस्तांबुल की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दैट नोट्स दैट सिमित हैज बीन रिकॉर्डेड इन इस्तांबुल्स हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स एज फार बैक एज 1593. And it remains an iconic food sold throughout the city. तो इतनी पुरानी हिस्ट्री है आपके लिए सिमित की. अगर आप वहाँ जाते हैं तो इसके बगैर आपको वहाँ से वापस नहीं आना. और सबसे ब्यूटिफुल थिंग क्या है वो मैं आपको बताऊँगी सिमित के बारे में इस गाने के बाद.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. Mein. Individual ho chahe aap, startup ho aapka ya phir established business aapka ho, AG Fintechs offer karta hai innovative financial solutions aapki needs ke ird gird tailor kiya jata hai. Bookkeeping se lekar payroll accounting tak, bank and credit card reconciliations tak, to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, business advisory services, matlab har cheez jo aapko help karti है टू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज्ड कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी. बनाइए जी फिनटेक्स को अपना पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर. गिव देम अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. 469-942-9888 469-942-9888 इज द नंबर और AG Fintechs FINTAX AGFintechs.com is where you need to log on. अच्छा, सिमित के बारे में आपको बता रही थी कि सिमित की जो सबसे ब्यूटीफुल बात है वो ये है कि ये किसी फैंसी रेस्टोरेंट का एक्सक्लूसिव खाना नहीं है. इट्स एवरीडे इस्तांबुल, फेरी टर्मिनल पे, स्ट्रीट कॉर्नर पे, बेकरी, मार्केट, हर जगह. और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सिमित इस्तांबुल का एक परफेक्ट सिंबल है. सिंपल, अफोर्डेबल, ट्रेडिशनल एंड ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल. और सो मज़ा ही आ जाए, जैसे मतलब आप जब जाएं या मैं जाऊं अगली बार, तो मैं सोच रही हूँ सुबह का टाइम हो, बॉस्फोरस के पास हल्की हल्की सी ठंडी हवाएं चल रही हो और हाथ में हो गर्मा गर्म सिमित, साथ हो कुछ टर्किश कॉफ़ी या फिर टी और सामने फेरी चल रही हो, पानी हो, और ये है वो, उस वक्त दिल से आवाज़ निकलेगी, दिस इज़ इस्तांबुल.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
2: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
3: डील कहाँ?
2: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
4: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
5: फ्लोर्स क्लीन
6: चेक,
5: विंडोज क्लीन
6: चेक,
5: किचन क्लीन
6: चेक,
5: एयर डक्ट्स क्लीन।
6: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
7: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया।
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया।
10: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
12: Visit www.senadainc.com today.
2: We need to talk.
13: अब क्या हुआ?
2: Nothing. It's not you.
13: Oh no.
2: It's the distance.
13: Distance? We live 10 minutes apart.
2: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
14: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
15: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching FunAsia Radio.
16: डालस की धड़कन 104.9 FM FunAsia Radio.

और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं है, तो इसका सोल्यूशन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए लेकर आए हैं. स्टे कनेक्टेड टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. इस मेंबरशिप में आपको क्या मिलने वाला है? दिस मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप इन प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ भी व्हेन अप्रोप्रिएट और व्हेन नेसेसरी, केयर कोऑर्डिनेशन, प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग और डायग्नोस्टिक सर्विस. तो नो मैटर इफ प्राइमरी हेल्थ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज नॉट इन योर नेटवर्क या फिर यू डोंट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस, दिस प्रोग्राम पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 कैन कवर ऑल दीज थिंग्स for you. This is not a health insurance plan. Eligibility restrictions do apply. So, वो तमाम बातें जानने के लिए आप उन्हें कॉल कीजिए 214-666-6259. उनका नंबर है जी, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए which is passionhealthphysicians.com. और वी आर इनटू फूड जंक्शन ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूँ किरण आपके साथ. हमने अभी सिमित की बात करी. मैं आपको कुछ टर्किश खास खाने बता रही हूँ. इस्तांबुल का आज हम चक्कर लगा रहे हैं और कुछ खास खाने जो मैं और आप जब एज अ टूरिस्ट जाएं तो हमें बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए. तो अगर आप इस्तांबुल में हैं और आप सिर्फ टोस्ट या फिर सिमित और कॉफ़ी को नाश्ता समझ रहे हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि टर्किश ब्रेकफास्ट इज़ एन एक्सपीरियंस. ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या क्या, टर्किश ब्रेकफास्ट की टेबल पे आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बताती चलती हूँ. डिफरेंट चीज़ेस, ऑलिव्स, टमेटोज, क्यूकम्बर्स, हनी होगा, जैम होगा, एग्स होंगे, फ्रेश ब्रेड होगी, सिमित होगा यानी कि वो बेगल जो अभी हम बात करके आए हैं, बेगल मतलब सो कॉल्ड बेगल, और फिर चाय होगी और कभी कभी मेनमेन भी होगा. अब ये मेनमेन क्या है? मेनमेन इज वन ऑफ दोज डिशेस जो सिंपल लगती हैं लेकिन एक बार आप इसे चख लीजिए तो फिर आपको अंदाजा होता है कि इसकी अट्रैक्शन क्या है. अंडे एंड टमेटोज एंड ग्रीन पेपर्स एंड ऑलिव ऑयल और सीजनिंग और फ्रेश ब्रेड के साथ यू जस्ट कीप डिपिंग दैट ब्रेड इन टू दिस हेवनली मेनमेन. मजीद बताऊंगी आपको टर्किश ब्रेकफास्ट के बारे में बट आफ्टर दिस सॉन्ग.

कुछ लोगों के बगैर वाकई गुजारा नहीं होता, कुछ खानों के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होता. ऐसे ही कुछ मजे मजे के खाने हम फूड जंक्शन में डिस्कस करते हैं. और व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इस्तांबुल, लेट्स कम बैक टू डालस. और मैं आपको फ्रिस्को में एक लोकेशन खुली है जो कि आपको बिल्कुल इंडियन फ्लेवर्स याद दिलाएगी, जिस पे आप बड़े हुए हैं, आपने बचपन में खाए होंगे. दिस इज होको, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड्स, और ये खुल गया है जी फ्रिस्को टेक्सस में. इन्जॉय कीजिए उनके फेवरेट्स जैसे कि चना पूरी, सैंडविचेस, डिलिशियस करीज हैं, एंड दे आर लेजेंडरी होको कोल्ड कोको. मतलब एवरीबडी कैन स्वेयर बाय दैट. विजिट देम. लोकेशन उनकी है 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000. फ्रिस्को में खुले हैं जी. एक्सप्लोर कर सकते हैं आप उनका मेन्यू hoco.us पे, विच इज hoco.us. और आपको बताएं जी कि उनका जो मंत्र है वो बड़ा सिंपल है, कम हंग्री एंड लीव विद द टेस्ट ऑफ इंडिया. एक और चीज, 20% स्टूडेंट डिस्काउंट विद वैलिड स्टूडेंट आईडी. तो ये हुआ स्टूडेंट्स के लिए एक धमाकेदार खबर. एंड 20% डिस्काउंट फॉर एम्प्लॉयज ऑन लंच पैक्स अवेलेबल मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. तो ये आप तमाम लोगों के लिए जो के ऑफिस में काम करते हैं, तो अपने लंच पे 20% ऑफ आपको मिल सकता है ऑन योर लंच पैक्स. तो ये जबरदस्त डील्स आपके लिए होको पे हैं. hoco.us पर लॉग ऑन कीजिए टू फाइंड आउट मोर. और बैक टू टर्किश ब्रेकफास्ट. सो टर्किश ब्रेकफास्ट की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इट इज नॉट रश्ड. आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम लोग यहाँ करते हैं ना, बस जल्दी जल्दी एक जो सीरियल खा लो जल्दी से, या फिर एक बेगल पे, या फिर एक क्रोसॉन्ट ले लो, उस पर जल्दी से चीज़ लगाओ और भाग जाओ बस लेके. ऐसा नहीं है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, चाय का दौर चल रहा है, टेबल पर डिशेज कंटिन्यूसली शेयर की जा रही हैं. मतलब नाश्ता इज़ अ सोशल इवेंट इन टर्की, स्पेशली इन इस्तांबुल.

नहीं है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, चाय का दौर चल रहा है, टेबल पर डिशेस कंटिन्यूअसली शेयर की जा रही हैं. मतलब नाश्ता इज़ अ सोशल इवेंट इन टर्की, स्पेशली इन इस्तांबुल. और परहैप्स इसी वजह से टर्किश हॉस्पिटैलिटी फूड कल्चर को इतना इम्पोर्टेंट, टर्किश हॉस्पिटैलिटी को फूड कल्चर में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है. तो नाश्ते से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टर्किश खाने की बात की जाए और कबाब्स की बात ना हो बहुत ज़्यादा नाइंसाफी. आई एम गोना कम बैक एंड टेल यू सो मच मोर अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ कबाब्स दैट आर देयर इन टर्की.

अच्छा, वैसे तो हम इस्तांबुल का चक्कर लगा रहे हैं आज, लेकिन दुनिया घूमनी है अगर आपने, अगर आप मूव कर रहे हैं, यू नीड टू शिप डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस एज वेल एज योर एंटायर हाउस होल्ड, तो या फिर इवन आपने अपनी गाड़ी मूव करानी है, तो SFL वर्ल्ड वाइड विल गेट यू कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि US के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड भी, कहीं भी आपने मूव करना हो दुनिया में, SFL वर्ल्ड वाइड से कॉन्टैक्ट कीजिए, SFLWorldWide.com. दिस इज SFLWorldWide.com, या फिर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं 1-800-691-2335. ये तो हुई, अगर आपने दुनिया जानी है, कहीं मूव करना है, तो ये आप कैसे मूव करेंगे. लेकिन फिलहाल हम हेड बैक कर रहे हैं कहाँ, ऑफकोर्स इस्तांबुल. आप सबकी फोन कॉल्स आ रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. नाश्ते से, जो टर्किश नाश्ता है, मलिक साहब, आपकी फोन कॉल का बहुत

बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ डिस्कस किया अपना एक्सपीरियंस 2 साल पहले जब आप टर्की गए थे, और नाश्ते का आप मुझे बता रहे थे कि क्या शानदार नाश्ता आपने टर्की में किया, वन ऑफ द बेस्ट दैट यू हैव एवर हैड इन योर लाइफ. एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ व्हाट अभी जो मैं आपको बता रही थी कि टर्किश नाश्ता जो है वो सिर्फ वही बेगल और चाय नहीं है, बल्कि या फिर सिमित और चाय नहीं है. देर इज़ सो मच मोर टू टर्किश नाश्ता. एंड जाइए आप इस्तांबुल तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए उस नाश्ते का. बहुत सारी वेजिटेरियन ऑप्शंस और बहुत सारी नॉन वेज ऑप्शंस आपको उसमें मिलती हैं, बल्कि मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ वेजिटेरियन टच टू द नाश्ता. अच्छा जी, अब हम बात आ रहे हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि टर्की का एक खाना बताओ जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आपका क्या जवाब होगा? आप मुझे कॉल करके बताइए, क्योंकि मैं ये जवाब आपको बस अभी देने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टर्की का फेमस खाना क्या है, डिश क्या है, लेट्स से, तो आप क्या बोलिएगा? चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से ये गिव अवे आपके लिए लेकर आ रही हूँ. चंडीगढ़ बाइट्स एलन में लोकेटेड हैं, ज़बरदस्त लंच थाली आपके लिए लेकर आते हैं जी. रोटेटिंग डिशेस होती हैं इनकी, एवरी डे लंच स्पेशल. दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन. $10 आपको ऑफ मिलेंगे इफ़ यू विन दिस कॉन्टेस्ट ऑन योर $50 डाइन इन बिल और मोर. आपको मुझे कॉल करके बताना है. वैसे आप सबसे पहले तो ये कि आप chandigarhbites.com पे लॉग ऑन भी कर सकते हैं ताकि आप उनका मेन्यू वगैरह चेक कीजिए, बेहतरीन है. और चंडीगढ़ बाइट्स आपके लिए ये गिव अवे लेके आया है. बताइए कि टर्की में अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा फेमस टर्किश क्या है, तो 972-235-5555 पे कॉल करके आप क्या जवाब देंगे? आई एम ऑल इयर्स.

बहुत बहुत शुक्रिया. इतनी सारी फोन कॉल्स आई हुई थी कि आपको मुझे म्यूजिक पे ले जाना पड़ा. दिस सो मेनी ऑफ यू, और हर बंदा बिल्कुल सही जवाब दे रहा है. देर इज बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस खाना है टर्की का, वो हैं जी उनके कबाब्स. और सेकंड नंबर पे आता है बकलावा, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं भी जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको मिलेंगी, कबाब्स एंड बकलावा. मैंने बहुत सारी मुल्कों में गई हूँ, मैं देखा है, मैंने जब भी आपको कुछ क्रेविंग होती है कुछ इस तरह की खाने की, यू विल ऑलवेज फाइंड अ डोनर कबाब रेस्टोरेंट Anywhere in the world, चाहे आप कहीं भी जाइए. मैंने जितने भी मुल्क देखे हैं उनमें मुझे डोनर कबाब तो जरूर मिल गया है. सो द मोस्ट पॉपुलर डिश इज कबाब, एंड इन दैट कबाब इट इज डोनर कबाब. तो सबसे पहले तो आप सबके फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. महेश, अंकित, शगुफ्ता, सईदा, प्रियंका, रश्मि, एंड अभी भी फोन लाइंस बस हो रही हैं. कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है. नंबर्स आपके फॉर्मूले में डल चुके हैं जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आई है. और आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो है कॉल नंबर 3, दैट इज शगुफ्ता शेख. शगुफ्ता, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे जो कि आया था आपके लिए चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से इन एलन. हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पहुंचाने के लिए. देन यू विल हैव अबाउट 7 डेज टू गो एंड अवेल योर $10 off your dine-in bill of $50 or more. So thank you so much for that. अच्छा जी, इसी के साथ मैं गाना अगला तो प्ले करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कबाब का जिक्र करा है तो चलते पढ़ते हैं कि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कबाब एक सिंगल डिश नहीं है, बल्कि कबाब्स में बहुत सारी वैरायटीज हैं. डोनर कबाब ले लीजिए, स्केंदर कबाब ले लीजिए, अदना कबाब ले लीजिए, सिस कबाब ले लीजिए. इन 4 मेजर कबाब्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और लेकिन वो डिस्कशन होगी इस गाने के उस पार. वी आर गोइंग टू बिगिन विद डोनर कबाब राइट आफ्टर दिस.

0: जी हाँ, बात हो रही थी कबाब्स की और मैंने आपसे कहा था कि बताती हूँ अभी आपको कि कौन कौन से कबाब्स हैं। लेट्स बिगिन विद डोनर कबाब। सबसे ज़्यादा पॉपुलर, हर जगह आपको डोनर कबाब दुकान पे लिखा हुआ नज़र आएगा। उसका मतलब ये है कि यहाँ आपको मिलने वाला है हलाल खाना, वन, और दूसरा आपकी कहीं कहीं टेस्ट बड्स से मिलता हुआ खाना, अगर आप पसंद करते हैं हलाल खाना खाना। तो सबसे पहले सुपर स्टार इसे कहा जाता है कबाबों में, टर्किश कबाबों में डोनर। इसमें होता है सीजन्स मीट, वर्टिकल रोटेटिंग स्पिट पे ये लगा होता है, स्लोली कुक किया जा रहा होता है, थिनली स्लाइस किया जाता है और फिर ब्रेड या फिर रैप के अंदर इसे डाल के आपको परोसा जाता है। इट इज़ वन ऑफ दोज फूड्स दैट हैज़ ट्रैवल्ड फार एंड बियॉन्ड टर्की। जैसे मैंने कहा, हर जगह दुनिया में मैंने डोनर कबाब्स खाए भी हैं और देखे भी हैं। इसी के साथ द नेक्स्ट वन इज स्केंदर कबाब। ये है जी, इसमें होता है स्लाइस्ड मीट, ब्रेड के पीसेस, टमेटो सॉस, योगर्ट, मेल्टेड बटर, और हॉट मीट जब उस मेल्टेड बटर पे डलता है और वो आपको बन के दिया जाता है, तो बस फिर डाइट को भूल जाइए और खाना एंजॉय कीजिए। द थर्ड वन इज़ अदना कबाब। आई रियली लाइक दिस वन एज वेल। स्पाइसी मिंस्ड मीट होता है, जैसे कि कीमा आप कह लीजिए, ट्रेडिशनली ग्रिल्ड ऑन स्क्यूअर्स। स्मोकी होता है, स्पाइसी होता है, जूसी होता है, और अगर आपको देसी फूड पसंद है ऑफ कोर्स, तो फिर दिस इज़ क्लोजेस्ट टू व्हाट यू कैन गेट टू योर देसी फ्लेवर। अगर आपको कुछ देसी सा क्रेविंग हो रही है और नहीं मिल रहा, तो फिर अदना कबाब इज़ प्रॉबली वन ऑफ द क्लोजेस्ट दैट यू कैन गो टू। और उसके बाद होता है सिस कबाब। ये होते हैं मैरिनेटेड पीसेज ऑफ मीट, स्क्यूअर्ड, ग्रिल्ड, सिंपल, क्लासिक, ट्रेडिशनल, मतलब बस मैरिनेटेड मिल्क मीट जो होता है उसको ग्रिल करके आपको दे दिया जाता है। इस्तांबुल की टूरिस्ट सोर्सेज लिस्ट करती हैं डोनर, सिस एंड स्केंदर कबाब को अमंगस्ट द सिटीज मस्ट ट्राई कबाब स्टाइल्स। आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, केजीएमपी 104.9 एफएम HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 एफएम HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax,
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा,
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
9: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवनस आस्किंग लंच में क्या है?
11: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 और ईमेल एट इन्फो एट सीमा मेहता लॉ फर्म डॉट कॉम।
13: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एंश्योर होम लोन्स एंड ओमर ख्वाजा प्रेजेंट. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
8: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

अब इमेजिन कीजिए टर्की की सड़कें हों और बॉस्फोरस का पानी हो और साथ ही साथ हाथ में कबाब्स का एक सैंडविच हो, तो सच में बात बन जाए। हम सुन रहे हैं फूड जंक्शन ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। लेकर गई हूँ आपको आज इस्तांबुल और कुछ बात कर रहे हैं मजे के टर्किश खानों की जो वहाँ का खासा है और आप उनको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते व्हेन यू गो और विजिट टर्की बाय एनी चांस। तो कबाबों की बात हो गई, उनके नाश्ते की बात हो गई, अब हम मूव कर रहे हैं उनकी पेस्ट्रीज की तरफ। कबाबों से और इन सब से लेते हैं ब्रेक और चलते हैं टर्किश बेकरी की दुनिया में। एंड यकीन कीजिए यहाँ पे कैलोरी काउंट करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो लेट्स बिगिन। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं उनकी बेकरी वर्ल्ड में, उनमें एक आता है जी बोरेक। बोरेक जो है वो एक फ्लेकी पेस्ट्री होती है जो चीज़ से फिल्ड होती है, फिल्ड विद चीज़, पोटैटो, स्पिनच और मीट भी। आई एम श्योर उसकी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलती होंगी। इट इज़ क्रिस्पी आउटसाइड, सॉफ्ट एंड फ्लेवरफुल इनसाइड, और फिर ब्रेकफास्ट, स्नैक, लाइट लंच, जो भी टाइम है आपका, किसी भी वक्त आपका स्नैकिंग का दिल कर रहा है तो बोरेक इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्नैक्स अराउंड। चलते चलते उसको लीजिए और मज़े से खाइए। और सारी ही हमारी पसंद की चीज़ें, चीज़ है, आलू है, स्पिनच है, हाउ बैड कैन इट बी और हाउ ग्रेट कैन इट बी, आई मीन देर इज़ नो लिमिट टू दैट। अच्छा जी, उसके बाद जो अगली चीज़ है जो बेकरी से, मतलब आप टर्की जाइए तो बेकरी उनकी जाइए तो ज़रूर लीजिए, दैट इज़ लखमकून। अब ये जो है इसको लोग कहते हैं टर्किश पिज्ज़ा भी, बट इट इज़न्ट रियली अ पिज्ज़ा। इट इज़ लाइक आप कह लीजिए थिन फ्लैट ब्रेड टॉप्ड विद मिंस्ड मीट, सो मतलब कीमे की उसके ऊपर डला होता है मिंस्ड मीट सा, उसके साथ टमेटोज एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस और फ्रेश पार्सली उस पर एडेड होती है, टच ऑफ लेमन, और फिर और क्या, बाइट लीजिए और इंजॉय कीजिए। लखमकून इज वाइडली डिस्क्राइब्ड एज थिन क्रिस्प फ्लैट ब्रेड टॉप्ड विद ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया। और अगर आपको स्पाइसी फूड जो है पसंद है तो लखमकून डेफिनेटली आपके फ्लेवर के या आपके टेस्ट बड्स को मैच करेगा। सो नेक्स्ट टाइम वी आर देयर, मी एंड यू, आई थिंक वी हैव टू गो टू द बेकरी एंड ट्राई ऑल दीज थिंग्स। और कुछ बेकरी की मजे की चीज़ें हैं लेकिन वो इस गाने के उस पार।

एंड दिस वन इज़ फॉर टेक्सस बिजनेस ओनर्स. अगर आप ढूंढ रहे हैं स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, तो फिर तारा कमर्शियल एनर्जी इज़ वेयर यू नीड टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि तारा कमर्शियल एनर्जी टेक्सस बिजनेस ओनर्स को प्राउडली सर्व कर रहे हैं सिंस 2002. सो ओवर टू डेकेड्स हो चुके हैं. कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस और कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स आपके लिए प्रोवाइड करते हैं जी. taraenergy.com, दिस इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन, या फिर आप उन्हें कॉल कीजिए 844-428-2808. 844-428-2808 is that number. Acha ji, back to the bakery delights of Istanbul. Hum aaj Istanbul mein hain, Turkey. Ab Istanbul mein hain to Turkish hi khana kha rahe hain. To jo ek aur cheez, abhi humne baat kari unke lakhmakun ki ya phir borek ki. Agar meri koi pronunciation galat hai ji, to please mujhe correct kar dijiye. Mujhe ye words pronounce karne nahi aate. But I'm trying my best. The next one is, how do you pronounce it? I don't know. It is P-I-D-E. Pide, isko keh lijiye. ये एक टर्किश स्टाइल फ्लैश ब्रेड बोट आप इसको कह सकते हैं. इसमें चीज होता है, मीट होता है, अंडे होते हैं, वेजिटेबल्स, डिफरेंट टॉपिंग्स, एंड इट इज बेक्ड अंटिल गोल्डन. और फिर अब आप सोचिए, ताज़ा ताज़ा ये बोट नुमा कश्ती सी जब अवन से निकलती है या जहाँ भी बेक हो रही होती है ये, तो क्या सिचुएशन होगी उस वक्त, भूख की भी और आलम क्या होगा खाने के मज़े का. वैसे टर्किश फूड में एक चीज़ बहुत कॉमन है, और वो ये कि ब्रेड जो है वो इनके खाने की एक्सेसरी नहीं है, बल्कि ब्रेड इट्सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द मील.

अभी तो बहुत सारी तारीफें टर्किश खाने की करनी बाकी हैं, क्योंकि एक एपिसोड में तो आपको पता है कभी भी एक शहर के और उसके खानों के साथ पूरे मुल्क के खाने के साथ कैसे जस्टिस किया जा सकता है। सो एपिसोड 2 इसकी नेक्स्ट फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी एक दो चीज़ें मेरे पास बाकी हैं। एक गिव अवे आपके लिए लेकर आई हूँ और वो गिव अवे है जी फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि फन पिज्ज़ा किचन ने एक नई लाइनअप स्टार्ट की है पिज्ज़ाज की, विच इज़ मैक्सिकन इंस्पायर्ड। तो आप जो है ये मतलब ये खाली पिज्जाज नहीं है, ये एक मतलब आपके लिए फ्लेवरफुल फिएस्टा उन्होंने अरेंज किया है, वेजिटेबल्स एंड पोयो लोको और साथ ही साथ सी फूड। एवरी बाइट इज बोल्ड एक्साइटिंग एंड इट इज मेड टू इम्प्रेस यू। सो आइए फन पिज्जा किचन और देखिए व्हाट इज दिस ऑब्सेशन ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस न्यू लाइन ऑफ पिज्जाज दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, और साथ ही साथ उनकी वेबसाइट चेक कीजिए funpizzakitchen.com। और ये आपके पास मौका है $10 का गिफ्ट कार्ड जीतने का फ्रॉम फन पिज्जा किचन। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जीत गए तो आपको फ्रिस्को की लोकेशन पे, फन पिज्जा किचन लोकेटेड इन फ्रिस्को, वहां जाना पड़ेगा टू गेट योर गिफ्ट कार्ड या कलेक्ट योर गिफ्ट कार्ड। अच्छा जी, हमने टर्किश, मैंने इतने सारे आपको खाने बताए, मैंने नाश्ता बताया आपको, उनके सिमित बताया, उनके कबाब्स बताए और सारी चीजें ये जो अब हमने बात कर ली हुई है, आपको मुझे कॉल, उसके साथ बेकरी डिलाइट्स भी बताए मैंने आपको, आपको मुझे कॉल करके ये बताना है कि इन सारी चीजों में से जो मैंने आपको बताई, आप जब टर्की जाएंगे, लेट्स से आप गए या आपने जाना है, तो क्या ऐसा है जो आप जरूर जरूर जरूर ट्राई करना चाहते हैं, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते इन सारी चीजों में से जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद अभी बहुत कुछ आना बाकी है, मैं आपके साथ अगली एपिसोड में सी फूड भी डिस्कस करूंगी, उनके डिजर्ट्स भी, उनके बकलावा भी, बट नॉट दैट, जो हमने ऊपर जिक्र किया उसके बारे में बताइए। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो, यू हैव टू कॉल मी, दिस इज फन पिज्जा किचन्स $10 गिफ्ट कार्ड दैट यू कैन विन। टेल मी, ये जो हमने जिक्र किया कबाब्स का और बेकरी डिलाइट्स का, इनमें से आप टर्की जाके सबसे पहले क्या खाना चाहते हैं? आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई देयर नाश्ता, आई एम क्वाइट लाइकिंग इट।

फन पिज्जा किचन की तरफ से ये $10 का गिफ्ट कार्ड आप जीत सकते थे. यू हैव टू गो टू फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को टू पिक दिस कार्ड अप. और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स. और हमारे जो आज के लकी विनर हैं वो हैं नेहा छाबड़ा. नेहा कंग्रेचुलेशंस. आप सब ने मैंने देखा एक ट्रेंड सा है, बहुत सारे लोग बेकरी आइटम्स ट्राई करना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं. सो चाहे वो लहमकून हो या फिर पाइड हो, पाइड ब्रेड हो, पता नहीं ये पाइड है कि पिदे है ये मुझे देखना पड़ेगा, या फिर बोरेक हो. एवरीबडी इज कमिंग अप विद द सेम आंसर. सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी एज वेल. मैं भी शायद वहां जाके नाश्ते के बाद उनकी ब्रेड्स ही ट्राई करने वाली हूँ. सो नेहा, दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव 7 days टू गो एंड पिक अप योर गिफ्ट कार्ड. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. फनीजा इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. तो जी, आज हम अपने इस फूड जंक्शन के सफर को यहाँ पे कर रहे हैं. एक्चुअली मैं आपको जल्दी से उनके सी फूड के बारे में बताती हूँ. बिफोर वी डू, लेट्स डू द लास्ट सेगमेंट और उसके बाद अगला सेगमेंट हम एपिसोड 2 में करेंगे. सो इस्तांबुल जो है वो पानी से सराउंडेड है, हम सभी जानते हैं. एक तरफ है बॉस्फोरस, गोल्डन हॉर्न, सी ऑफ मार्मरा. तो ऑब्वियसली सी फूड जो है वो इस्तांबुल के खाने का एक बहुत ज़्यादा मेजर हिस्सा है. सो उनकी बात करते हैं उनकी सबसे आइकॉनिक सी फूड डिश का, विच इज़ कॉल्ड बालिक एकमेक. ये लिटरली मतलब इसका मतलब है, आप कह लीजिए इसको फिश एंड ब्रेड कहा जाता है. इसे फ्रेश ग्रिल्ड फिश होती है, ब्रेड, अनियन, ग्रीन्स, लेमन और ऑफ कोर्स पानी का नज़ारा, वाटर फ्रंट व्यूज. तो स्पेशली इसमें जो एक खास चीज़ है वो है इमिनोयू. आप एक ये जो है ये एक सैंडविच होता है, आपको एक सैंडविच मिलता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा इससे सैंडविच से बहुत बढ़कर होता है. इस्तांबुल्स ऑफिशियल सोर्सेज स्पेसिफिकली एसोशिएट इमिनोयू विद बालिक एकमेक एंड डिस्क्राइब इट एज एन आउटस्टैंडिंग वाटर फ्रंट स्ट्रीट फूड ट्रेडिशन. तो मतलब आप बालिक एकमेक लीजिए, साथ इमिनोयू लीजिए, तो ये बन गया आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जो कि उनकी गवर्नमेंट भी आपको कहती है कि ज़रूर खाइए. तो अब हाथ में आपके ये है, तो इमेजिन कीजिए बॉस्फोरस के पास आप खड़े हैं, फेरी बोट्स आ रही हैं, जा रही हैं, सीगल्स ऊपर से गुजर रहे हैं, हाथ में है आपके गर्मा गर्म फिश सैंडविच. नाउ दैट इज़ अ फूड जंक्शन मोमेंट. व्हाट डू यू से?

0: और इसी के साथ बस इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ चाहता है। उससे पहले मैं आपको बताती चलूं, अगर आपका बच्चा थर्ड थ्रू फिफ्थ ग्रेड का स्टूडेंट है तो नेक्स्ट जेन स्पीकर्स एकेडमी हेल्प कर सकता है उन्हें टू बिल्ड द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स दैट दे विल यूज फॉर अ लाइफ टाइम। जी हाँ, नेक्स्ट जेन स्पीकर्स एकेडमी इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम जिसे डिजाइन किया है एक्सपीरियंस्ड कोचेज सुनही साइमन सैंटियागो एंड ऑड्रा लैंगस्टन ने। दीज आर द पीपल हु हैव मेंटर्ड डिबेट चैंपियंस एंड वैलिड Victorians and Ivy League graduates. ये online program आपके बच्चे को help करता है to, you know, grow into confident leaders. You have any question listening to this, give them a call. 214-724-2867. 214-724-2867 उनका number है जी, जरूर contact कीजिए. There's no harm in asking and discussing what they are offering and how they can help your child. The website is nextgenspeakersacademy.com. तो अपने बच्चे को confidence दीजिए to lead tomorrow starting today with Next Gen Speakers Academy. और इसी के साथ हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है फूड जंक्शन का। आई हैड एब्सोल्युटली ब्लास्ट टॉकिंग टू यू अबाउट इस्तांबुल एंड द फूड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट टू देयर कल्चर। और अगले फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ यानी कि 1 अक्टूबर को इसकी एपिसोड 2 करेंगे जिसमें मैं आपसे बात करूंगी इस्तांबुल की स्वीट साइड की। उसके साथ बात की जाएगी आपसे उनके मेज़े की यानी कि स्मॉल प्लेट्स में जो वो सर्व करते हैं और क्या मज़े का होता है ये मेज़े। उसके साथ उनके सारे वो डिज़र्ट्स जो कि दुनिया जहान में फेवरेट हैं। बात होगी टर्किश कॉफ़ी और टर्किश टी की जो हम कितने शौक से यहाँ पर ख़रीदते और पीते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी उनके कुछ ऐसे बाजार्स के बारे में जो टर्की आप जाइए इस्तांबुल जाइए तो बिल्कुल वापस ना आइए जब तक कि आप उनके स्पाइस बाजार और उनके ग्रैंड बाजार का टूर नहीं कर लेते। उसके साथ साथ उनके खाने पीने के नेबरहुड्स, कुछ देसी खाने, कुछ और मजीद वेजिटेरियन ऑप्शंस, अभी बहुत कुछ बाकी है।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं।
9: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट। ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री NMLS 2025289 लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल। इक्वल हाउसिंग लेंडर।
12: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
13: हाँ।
12: घर रिलोकेट करनी है?
13: हाँ।
12: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
13: हाँ भाई हाँ।
12: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
14: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Family को चाहिए North Indian, friends को South Indian. अब जाए तो जाए कहाँ?
19: Simple. बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
20: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
19: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
20: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
18: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
21: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
22: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
23: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
22: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
23: और एंटरटेनमेंट?
22: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
23: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
22: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रैंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
24: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
25: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
26: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
27: तुमसे मिलके दिल का है।
25: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
26: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
28: कितने आदमी थे?
29: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunil Kiran में. अभी अभी हमने फिनिश किया है फूड जंक्शन. आज हमने सफर किया इस्तांबुल का और एपिसोड वन खत्म हुई. नेक्स्ट मंथ फर्स्ट थर्सडे दैट इज फर्स्ट अक्टूबर वी विल ब्रिंग एपिसोड टू. सो मच मोर दैट इज स्टिल देयर टू डिस्कस विद यू वेयर इस्तांबुल एंड टर्किश फूड इज कंसर्न्ड. फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको देने लगी हूँ वेदर की अपडेट. आज है जी सेप्टेम्बर द 3rd 4:38 PM इन स्टूडियो और इस वक्त सिटी ऑफ मिकिनी में है 89 degrees. हाउएवर इट फील्स लाइक 98 राइट नाउ. सो थैंक गॉड कि हमें वो 99s और 100 से थोड़ी सी राहत मिली है. दिन रहा पार्टली क्लाउडी मोस्टली सनी और यू नो 50% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स रहे. नॉट एज वार्म ऑफ कोर्स लेकिन कहीं कहीं बारिश का इम्कान है और कहीं कहीं पे बस बादल ही बादल हैं. बट मौसम बड़ा खूबसूरत और सुहाना है. शाम रहेगी पार्टली क्लाउडी विद 20% चांस ऑफ शावर्स ह्यूमिड विद लोज इन द मिड 70s. तो ये है जी आपका आज का वेदर फोरकास्ट. वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि कुछ बारिश हो जाए ताकि थोड़े जो पौधे आपके या प्लांट्स और ग्रास और हर तरफ जो है वो हर चीज जल रही है. सो वी नीड दैट काइंड ऑफ वाटर गुड वाटर टू कीप दैट मेंटेन्ड. पोलन काउंट आज का 9.3 व्हिच इज ऑफ कोर्स मीडियम हाई. सो रैगवीड एल्म एंड ग्रास दैट इज व्हाट इज बॉदरिंग यू. तो प्लीज अपनी रेमेडीज लेके रखिए. यूवी इंडेक्स आज का रहा बल्कि है ऑल्दो इतना बादल है लेकिन फिर भी यूवी इंडेक्स इज 10. सो सनस्क्रीन अपनी हैंडी रखिए और हाइड्रेशन इज वन थिंग that you have to be very, very careful about. Otherwise, you will face severe headaches or you really don't want that. Sunrise aaj ka hua 7:01 subah, jabki aaj ka sunset hoga 7:49 PM.

0: से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: और इसी के साथ वक्त हो चला है जब मैं आपको देने वाली हूँ करेंसी अपडेट कि यूएस डॉलर आज कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। आज है जी थर्सडे सितंबर द 3rd, 4:44 PM इन द स्टूडियो, और इस वक्त अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.86 पे। ब्रिटिश

कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. आज है जी थर्सडे सितंबर द 3rd, 4:44 PM इन द स्टूडियो, और इस वक्त अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.86 पे. ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.73, जबकि इंडियन रुपी 94.61 पे ट्रेड कर रहा है. कनेडियन डॉलर 1.37 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.599 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपालीज रुपी 151.45, जबकि बांग्लादेशी टका 122.81 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. दैट वाज योर करेंसी अपडेट. इस गाने के उस पार मैं आपको देने वाली हूँ गोल्ड प्राइस अपडेट के आज सोने का भाव क्या रहा.

और आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट का बताने वाली हूँ जी. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंश्योर होम लोन्स एंड उमर ख्वाजा प्रेजेंट्स मेक योर ओन गणेशा विद फन एशिया नेटवर्क. दिस गणेश चतुर्थी चिल्ड्रन आर एजेस 5 to 12 कैन क्रिएट देयर ओन क्ले गणेशा एट द फन फील्ड वर्कशॉप जो कि आपके लिए होगी सैटरडे सेप्टेम्बर 12th को. स्पॉट्स आर लिमिटेड. एजेस 5 to 12 बच्चों के लिए है जी ये. रजिस्टर आज ही कीजिए by logging on to ganesha.funasia.net. ek baar phir is address ko note kar lijiye, ganesha.funasia.net. Let your little artist's creativity shine with this make your own Ganesha with Funasia Network, brought to you by Passion Health Primary Care and Ensure Home Loans as well as उमर ख्वाजा. और इसी के साथ मैं देने लगी हूं आपको गोल्ड प्राइस अपडेट. सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू goldprice.org गोल्ड प्राइस पर आउंस है जी $4,473.19 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $143.82.

कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $3.34 का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $103.93 का इजाफा देखने को मिला। बट दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वे योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण।

जी हाँ, आज तो मौसम थोड़ा सा माना माना सा लग रहा है, माना हुआ है। कुछ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो घास और पौधे जो जल रहे हैं उनके लिए बेहतरी हो जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको देने लगी हूँ ट्रैफिक अपडेट। इस वक्त क्या हमें रोड्स पे नज़र आ रहा है? ऑब्वियसली इट इज़ ड्राइव टाइम, आप निकले हुए हैं, कहीं पहुँचना है आपने, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विजिलेंट एंड केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग। आई कैन सी अ कोलिजन एट IH 45 टूवर्ड्स सिम्पसन स्टूअर्ट रोड नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से 3 लेन्स आर ब्लॉक्ड। द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई। ऑल्दो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट हुए काफी थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो आई एम होपिंग कि यहां पे कुछ क्लियरिंग अप अब आपको देखने को मिलेगी। देर इज अनदर इंसिडेंट दैट इज रिपोर्टेड राइट नाउ, वेरीफाई हुआ है जी, IH 30 पे टूवर्ड्स हैम्पटन रोड ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 2 लेन्स आर ब्लॉक्ड। द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई एज वेल, एम्बुलेंस हैज बिन कॉल्ड। और चूंकि ये अभी अभी वेरीफाई हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे काफी सारा बैकअप देखने को मिलेगा। देर विल बी प्रॉबली लॉन्ग ट्रैफिक लाइन्स, सो प्लीज बी केयरफुल एंड विजिलेंट वेन यू आर गोइंग देयर। बट दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड राइट नाउ ऑन द रोड्स ऑफ डैलस, विच इज ऑफ कोर्स ऑलवेज अ गुड न्यूज। तो दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स of Omar Khwaja.

0: थे यार।
1: ये वक्त हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड था और हम शायद पहले ऐसे इंडियन।
2: और इसी के साथ टाइम आ चला है आपसे विदा लेने का। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून। बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए, कल है फ्राइडे एंड ऑफ कोर्स ऑन फ्राइडेज 3 PM टिल 4:30 PM हम लेते हैं किड्स जंक्शन लाइव कॉल्स तमाम बच्चों की, उनके फेवरेट गाने प्ले किए जाते हैं राइट हेयर ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। साथ ही साथ आप में से कोई मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होता है टू होस्ट, इनफैक्ट को होस्ट चिल्ला पार्टी विद मी। सो आई विल सी वन ऑफ यू टुमारो इन द स्टूडियो। एंजॉय योर रेस्ट ऑफ योर डे एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। लेट्स वेलकम टुमारो विद द बैंग।

0: मर गई।
1: मिस करती रहती तुझको पर तू मेरा फोन न पकड़े।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
5: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
6: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
7: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
8: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
9: Term restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
10: Restaurant choose karna ho? Google Reviews. Hotel book karna ho? Google Reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
11: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
12: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
13: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
12: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
13: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
14: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
15: Hello Texas Parivar. Kya aapko pata hai, there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
16: यहाँ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
17: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
18: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
19: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
18: नहीं।
19: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
18: नहीं।
19: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
18: वो भी नहीं।
19: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
20: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy.
21: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
22: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
23: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
0: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
1: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनकी जिम्मेदारी।
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉपटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स older to game.

Good well evening, namaskaram, assalamualaikum, sat sri akal, kim chodi FW. This is your evening drive time show right here on 104.9 FM. Show ka naam hai Jee the Bindaas Show, brought to you by your very own Banda Bindaas, Marvin Das, 5 to 7, Monday to Thursday. I bring this show for you all. एंड बिल्कुल सही बात है यार कि यू नो ट्राइंग टू कीप अ गुड मूड इवन दो वी गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम हमेशा खुश रहेंगे. कुछ चीज़ें हमें परेशान कर सकती हैं एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ जेन्युइन. इफ़ यू आर फीलिंग स्टक अप, कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको बार बार तंग कर रही है, इट इज़ ओके, लेट इट स्टे देयर. बट ऑल्सो उसको इसी टाइम ये भी बताओ कि तूने हमेशा तो रहना नहीं, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे. वो तो मोदी जी भी कहते हैं. Today is September 3rd, Thursday evening, and it's 5:08 in the studio clock. 5:08. जैसा कि मैंने कहा, 7 बजे तक आपके साथ होऊंगा. And birthdays, anniversaries, हर खुशी हम यहाँ celebrate करना चाहते हैं. If you're celebrating something, even a simple achievement from your kids, even something that you got unexpectedly, that you didn't expect, that came your way, and that made you joyful, give us a call. 972-235-5555 is the number to the studio. और मैंने आज सुबह थोड़ा late उठा था. एंड अक्सर ऐसा होता है कि सुबह मैं थोड़ा लेट उठना पसंद भी करता हूँ. नेचर में ऐसा है, टॉरस इज़ माई स्टार साइन. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप भी लेट उठते हो या सुबह आलसी रहते हो, तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है. इट इज़ ऑल बिकॉज आपके सपने लंबे हैं यार, और उसको थोड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है ब्रो.

0: शावा शावा होए होए DDLJ व्हाट अ पिक्चर ओए होए एंड आपको रिमाइंड कराना है जी कुमार शानू इज कमिंग ऑन द 11th ऑफ सितंबर एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. Make sure you get your tickets right away. These are going to be available on eventbrite.com. That's eventbrite.com or call 214-869-2668. That's 214-869-2668. And this event is one that you definitely can't miss. Karega yaar. Dekho, unforgettable 90s. Hum sab agree karte hain 90s ke gaanon mein kuch aur maza tha. Of course, 70s, 80s was a different charm. But 90s had its own flavor. And some of the most iconic songs jo gaye gaye hain, wo aapko Kumar Shanu saab ki awaaz mein sunne ko mile hain. To ye sab kuch live aapke saamne ho, Kumar Shanu saab saamne ga rahe ho. And you get to sing along. I think nothing better than that. Free parking hai is event mein. An exclusive meet and greet options are also available. That's eventbrite.com. You know, मैं किसी से बात कर रहा था आज कि my me and my dad used to fish a lot, right? मछली पकड़ते थे. वैसे तो मेरे पापा को दोनों तरह की मछलियों का शौक था, जल की भी और थल की भी. पर जब उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली तो फिर थल की मछलियाँ कैंसिल, ओनली जल मछली अवेलेबल. आज के हालात में कोई कहे ना यार ऐसा है वैसा है, उसको बोलो हाँ ठीक है, बोले हाथी उड़ता है, बोलना हाँ आज सुबह मेरी छत पे बैठा था.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
5: सुनो कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
5: कहाँ. फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
8: अरे यार घर मिल गया.
9: घर तो देख रहा हूँ लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
7: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
9: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
7: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897. Or visit astrologerishwar.com.
11: We need to talk.
12: अब क्या हुआ?
11: Nothing. It's not you.
12: Oh no.
11: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
11: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
7: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
11: Floors clean.
13: Check.
11: Windows clean.
13: Check.
11: Kitchen clean.
13: Check.
11: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts भी क्लीन करना होता है?
14: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online third through sixth grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
17: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Funasia Radio.

होठों को छुआ उसने एहसास अब तक है, होठों को छुआ उसने एहसास अब तक है, आंखों में नमी और सांसों में आग अब तक है। वक्त गुजर गया पर याद उसकी अब तक है। क्या पानीपुरी थी यार, स्वाद मुंह में अब तक है।

पानी पूरी का भी अपना ही स्वाद होता है भैया, पर क्या करना पड़ता है पानी पूरी को एंजॉय करने के लिए? इग्नोर क्या करना पड़ता है? अंकल के हाथ या भैया के हाथ वो ना देखो, सिर्फ पानी पूरी की काउंटिंग रखो, कितने खिलाए हैं, 6, 7, 8, 9, और एंड में वो आदत कैसे जाएगी ना, भैया एक पापड़ी देना। भाई लोग पूछते हैं सलमान खान भाई पैसे कैसे बनाते हैं, भैया अभी देखो बिग बॉस में सलमान खान की फी जो हो गई है भैया 120 करोड़ रुपए हो गई है। हाँ जी, दैट इज 20 टाइम्स अप फ्रॉम द 2.5 करोड़ पर एपिसोड, 120 करोड़, हद कर दी है भैया। सल्लू भैया मान लो। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय नॉन अदर देन आवर वेरी ओन स्पॉन्सर, जिनका नाम है जी ओमर ख्वाजा। इफ यू आर एवर इन्वॉल्वड इन एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट हो या स्लिप एंड फॉल हो, ऑल दो वी विश एंड होप दैट यू नेवर गो थ्रू दैट, बट इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट ट्रबल, कीप अ नेम इन योर नोटबुक और in your mind. The name is Attorney Omar. That's the name on the website as well, attorneyomar.com. Sara kuch aapke liye wo karenge, fight with the insurance companies, make sure that your medical bills are taken care of aur aapki gaadi ka repair tak sab unke haathon mein hoga, and they'll make sure they do it right. attorneyomar.com for that.

0: ये गाना एक्चुअली किसी शेख ने लिखा है, क्योंकि दिल में रेत ही रेत भरी थी और प्यास ही प्यास जिंदगी थी, कहीं मेरे को लगता है रेगिस्तान में खो गया था बेचारा भाई। बट नॉनदलेस आप जिंदगी में अगर बिजनेस कर रहे हैं और आप ये सोच सोच के खो रहे हैं कि यार मैंने बिजनेस खोल लिया है, अच्छा भी चल रहा है, बट आई एम नॉट एट द पॉइंट कि मैं खुद से पैसे डाल के इसको मल्टीप्लाई करूँ, बट हाँ अगर मुझे कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए, कोई दोस्त कोई फैमिली मेम्बर, तो मैं इस बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। तो भैया आपका दोस्त आपका फैमिली मेम्बर, ये तो एक बार ही आप पूछोगे तो उसके बाद फ़ोन नहीं उठाएंगे। एक इंसान फ़ोन आपका उठाएगा, उनका नाम है जी शाहिद पंजवानी, ही इज़ विद डी एस पी ए लोन एक्सपर्ट एंड ही इज़ द वन हु कैन गेट यू लोन्स जो कि भाइयों और रिश्तेदारों से बेहतर हैं। तानों के अलावा सिर्फ इंटरेस्ट रेट होगा, वो भी वाजिब होगा ताकि आप उसको आसानी से पे कर सकें। लेट्स वेलकम द लोन एक्सपर्ट है मिस्टर शाहिद पंजवानी। गुड इवनिंग टू यू सर।
1: गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल लिसनर्स।
0: शाहिद भाई, मेरा सवाल हर बार की तरह आज थोड़ा डिफरेंट है। सवाल यह है कि जो बिजनेस ओनर्स आज बिजनेस कर रहे हैं, देयर बिजनेस इज इन प्रॉफिट, बट उतना प्रॉफिट नहीं है कि वो उनको यू नो इतना रेवेन्यू मिल जाए कि वो नई लोकेशन दोबारा खोल लें या उसको मल्टीप्लाई कर लें, ऐसी सिचुएशन में भाई और पिताजी ने फोन उठाना बंद कर दिया है, अब आप ये बताइए कि क्या आप इनकी मदद कर सकते हैं टू गेट अ लोन प्रोग्राम?
1: श्योरली हम एक लोन प्रोग्राम के बारे में कुछ टाइम से बात कर रहे हैं, जो मैं क्विक रिकैप, जिन्होंने पहले इसके बारे में नहीं सुना है, आई कैन लेट देम नो। एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स जब भी इनको पैसे की जरूरत पड़ती है, व्हाट दे डू इज दे गो टुवर्ड्स यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड और लाइन ऑफ क्रेडिट, और लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स विल गेट दी मर्चेंट कैश एडवांसेस, जो वीकली पेमेंट या डेली पेमेंट आपके बैंक स्टेटमेंट के बेस पे मिल जाते हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता है। We have a loan program where we can do loan based off your gross revenue and not your net profit. So let's say if you have $1 million gross sales, तो उस million dollar का 30-35% तक आप eligible हो सकते हो, 3-3.5 lakh dollar का loan हो सकता है। 10 year term होगा, no prepayment penalty और monthly payment होगी। इसकी खास बात यह है कि इसमें हम कोई hard inquiry नहीं करते आपकी credit पे। Secondly, we do not need your bank statements, we do not need your tax returns. And thirdly, the results are under 10 minutes. So, out and out, बहुत simple application process और बहुत simple loan terms, loan process है. Hard inquiry नहीं है, कोई documentation upfront require नहीं है, और under 10 minutes आपको result मिल जाता है. तो काफी time जो stress होता है कि लोन के लिए अप्लाई करने के लिए इतना सारा पेपर वर्क देना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और हार्ड इंक्वायरी होगी, मैं डिनाई हो गया तो मेरी क्रेडिट पे इंक्वायरी रहेगी, इन केस इफ आई गेट अप्रूव्ड एंड मे बी इफ आई डू नॉट लाइक द लोन टर्म्स, देन स्टिल आई अप्लाइड एंड आई गॉट अ हार्ड इंक्वायरी एंड दैट इंक्वायरी स्टेज फॉर समटाइम्स 30-60 days. तो वी हैव सॉल्व्ड ऑल थ्री प्रॉब्लम्स, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, no hard inquiry and the results, loan terms under 10 minutes. Anyone exploring working capital, expansion, equipment, inventory, for whatever reason, as long as you have been in 1 year in business, call us, we will help you get capital to whatever may be the need for the capital, but you have to be at least 12 months in business.
0: 8177863338 is the number for Shahid Saab. 8177863338. SBA Loan Experts. If you are looking for a loan, get with them right away. चंडीगढ़, चंडीगढ़ मेरा भी शहर है चंडीगढ़।

रास्ते बदल देता है हमारे देश का यूथ। हाँ जी, यहाँ का नहीं, इंडिया पाकिस्तान नेपाल का जो यूथ है ना, बिल्कुल रास्ते पलट देता है यार हमारे देश का नौजवान, जब उसको पता लगे कि आगे मामे खड़े हैं, यानी कि पुलिस वाले ही।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
3: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
4: लैपटॉप में।
3: इन्वेस्टमेंट?
4: गूगल ड्राइव।
3: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
4: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
3: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
5: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
6: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
5: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: Welcome back to your evening drive time show, 5:47 in the studio clock. Today is Thursday evening, September ki 3 tarikh hai ji, and that means Thursday hai to mera last show for this week, because Monday to Thursday is my show, and this was the track Desperado, Raghav and Tasher in this one. And desperate measures hame lene padte hain kai bari life mein yaar, some unseen circumstances ho jate hain, kuch uncalled expenses ho jate hain, and you lose control of your financial balance. And when that happens, आपको कभी क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंड, मतलब जो आपका बजट आपने सेट किया होता है उससे क्रॉस हो जाता है, एंड देन यू माइट हैव टू टेक सम लोन्स एंड यू फॉल बैक ऑन सम पेमेंट्स, एंड दिस इज ट्रूली ह्यूमन. पहले तो आप अपने आप को कोसिए मत कि यार मैं किस सिचुएशन में हूँ. एनी थिंग कैन हैपन टू एनी बारी, एंड दैट्स कॉल्ड लाइफ. एंड इफ लाइफ चूजेज टू स्विंग यू, इट विल. यू हैव टू बी द वन कंट्रोलिंग द स्विंग्स एंड मेकिंग श्योर यू कम बैक इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. और जब आती है जी आपके डेट की बात, जिसकी वजह से सारा खेल है जी अमेरिका में, योर क्रेडिट स्कोर इज रियली डिपेंडेंट, एंड दैट क्रेडिट स्कोर रियली मेक्स एवरीथिंग गो वर्क फॉर यू, चाहे घर हो, गाड़ी हो, यू नो, योर बिजनेस लोन्स, एवरीथिंग हेल्प्स विद योर स्ट्रॉन्ग क्रेडिट. बट अगर वो ही खराब हो जाए बिकॉज ऑफ सम पेमेंट्स दैट आर आउटस्टैंडिंग, सम डेट्स दैट आर पाइलिंग अप, एंड घर में उससे और फुट पड़ती है और प्रॉब्लम्स होती हैं, देर इज अ सोल्यूशन, एंड दैट सोल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ ऊरा डेट. oraa.org इज द वेबसाइट. आई एम गोना कॉल द मैन अमन, हु इज गोना टेल यू हाउ ही कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ डेट. गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू?
1: ऑल गुड. फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को एक बार फिर से अमन की नमस्कार. सो दोस्तों, 3 तारीख हो गई है और क्रेडिट कार्ड की चिट्ठियां आनी शुरू हो गई होंगी आपके मेल बॉक्स में. प्लीज मिनिमम पेमेंट करने से पहले एक बार जरा सोच लीजिए कि पिछले महीने भी मिनिमम पेमेंट आपने की थी तो क्या क्रेडिट कार्ड उतरे? नहीं, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से नहीं उतरते, ना ही वो हिलते भी हैं, क्योंकि 40% इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं. तो अगर आप सच में परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड उतर नहीं रहे हैं और मिनिमम पेमेंट दे दे के आप थक गए हैं, तो ऊरा को कॉल कर सकते हैं. ऊरा आपके इन क्रेडिट

कार्ड्स की, सब सारे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल, बिजनेस, स्टोर, आपके आपकी वाइफ के जॉइंट क्रेडिट कार्ड, इन सब की एक पेमेंट बना देगा ताकि आपका बजट इजी हो जाए मंथली। ऑन द टॉप ऑफ दैट आधा कर्जा माफ हो जाएगा, आधा क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ करवा दिया जाएगा, जो आधा बचेगा उसकी इंटरेस्ट फ्री पेमेंट्स बना दी जाएंगी। तो ना तो ये बैंकरप्सी करनी पड़ेगी, ना कोई नया लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड भी उतर जाएंगे, आधा माफ हो जाएगा जितना आधा खर्चा है और उसकी इंटरेस्ट बन जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड के अलावा पर्सनल लोन्स हैं जिसको आप मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं, या गाड़ी जो रीपोजेस हो गई है, गाड़ी जो टोटल हो गई है, उनके लोन्स भी आप उतार रहे हैं, तो अगर उसको भी माफ करवाना चाहते हैं तो बेहिचक कॉल कीजिए, अपनी लैंग्वेज में बात कीजिए, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, किसी भी लैंग्वेज में, जस्ट गिव अस अ कॉल। मिनिमम पेमेंट करते रहने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ये है कि ना कर्जा उतरेगा, ना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा, ना नया लोन मिलेगा। तो जस्ट गिव अस अ कॉल, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर है मेरा 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555, और हमारी वेबसाइट है www.oora.org, वहां पर भी आप हमारा रिक्वेस्ट फॉर्म भर सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे, लेकिन मिनिमम पेमेंट से पहले कॉल जरूर कीजिए।

0: I want to give a big shout out to Fusion Republic Indian Kitchen and Bar, जो कि Richardson से अब आपके लिए second location लेके आ चुके हैं जी, in the heart of Irving. This is on 8880 Walton Boulevard in Irving. Familiar flavors, but a fabulous fusion. And if you don't know what they do, they bring you a 25-item lunch buffet every day, featuring chaats, tandoor platters, exotic flavors, and of course favorites like siraga samba mutton biryani, apricot malai kofta, chili paneer bao, and burrata chicken tikka, and more. Dinner is available in a la carte. And now, if you've loved their food in Richardson, give them the same love when they come to Irving. Aapke paas opportunity hai to win one giveaway from us, which is going to be one free siraga samba dum mutton biryani or dum mutton biryani or a vegetable dum biryani. And for that, you don't have to pay anything. I'm going to ask you a question. If you give me the answer that I'm looking for, actually creative answer ka aajkal keeda chala hua hai mujhe. To ek sawal main aapse poochunga, aapne dena hai thoda outside of the box wala jawab. समझ के आप मेरे से बात करें. एंड इफ यू गिव मी अ क्रिएटिव आंसर, यू विल गेट योर सेल्फ वन मटन दम बिरयानी और वेजिटेबल दम बिरयानी एब्सोल्युटली फ्री. सवाल यह है कि सपोज करें कि आपका बेस्ट फ्रेंड और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हों, ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हों, तो आप पहले किसको बचाओगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिएटिव सा आंसर लेके आओ और इनाम ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ. Alright, let's see who do we have, जो मेरे इस सवाल का थोड़ा outside of the box, डब्बे से बाहर निकल कर जवाब देना चाहते हैं. पहले नंबर पे कौन है? गुड इवनिंग टू यू फन. यार बड़ी जल्दी है आप लोगों को ना, जल्दी में लग जाती है हाथों में हल्दी और अगर मेहंदी लग गई तो पछताओगे. गुड इवनिंग फन एशिया, हु इज दिस?
1: हाय, दिस इज अंशु.
0: अंशु जी कैसी हैं आप?
1: मैं बढ़िया, आप बताइए.
0: गुड गुड गुड. आपको स्विमिंग आती है?
1: थोड़ी बहुत.
0: चलो अच्छी अच्छी बात है, मतलब डूबोगे नहीं आप. चलो आपका आपका अब मैं इसमें ये बोलूंगा कि आपकी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी, आपकी बेस्ट फ्रेंड और आपका बॉयफ्रेंड, ये दोनों पानी में डूब रहे हैं, आप दोनों में से किसको बचाओगे?
1: पहला तो मेरा सवाल ये हुआ कि वो दोनों अकेले करने जा गए थे बोट पे.
0: अच्छा,
1: मेरे बिना.
0: ये कहती है अंशु जी कि भाई तुम अकेले करने क्या गए थे?
1: एग्जैक्टली, तुम अकेले क्या करने गए थे मेरे बिना? मैं तो किनारे पे हूँ, चल खैर मैं दोनों को ही बचा तो लूंगी.
0: नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ वो क्या करने गए थे. मैं बताता हूँ वो क्या करने गए थे. आप थे दूसरे कोने पे, उन्होंने इस कोने से बोट ली थी ताकि आपके पास आए. रस्ते में बोट डूब गई, दोनों डूबने लगे थे, आप तक पहुंचने से पहले बेचारे डूब गए. चलो कोई बात नहीं.
1: अच्छा, वो दोनों साथ में क्या कर रहे थे?
0: वो एक्चुअली आप बुलाया, आप ही ने था उनको. आपकी गर्ल, आपकी जो फ्रेंड थी वो लेट हो गई, तो आपका जो बॉयफ्रेंड है वो अच्छा आदमी था, उसने कहा लड़की अकेले कहाँ पैर के जाएगी.
1: जस्टिफाइबल
0: आंसर नहीं है. चलो कोई बात नहीं अंशु जी, कई सवाल के जवाब नहीं होते और उनको रहने देते हैं. आगे चलता हूँ जी, अगले नंबर पे रेडियो का वॉल्यूम लो, आपका वॉल्यूम ज्यादा. गुड इवनिंग, हु इज दिस? कैन यू लोअर योर रेडियो वॉल्यूम और आई गो टू द नेक्स्ट विंडो.
2: हेलो,
0: हाय सर, गुड इवनिंग मालिक, कैसे हैं प्रभु?
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मालिक भी बोल दिया, प्रभु भी बोल दिया, मतलब ऐसे लगता है बिना वाली फीलिंग.
0: क्योंकि आपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर दिया मालिक, मेरे कान का पर्दा फटता फटता बच गया. अच्छा
2: अच्छा जी,
0: अब ये बताइए आपका नाम?
2: मेरा नाम सौरभ है.
0: सौरभ भैया, गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड डूब रहा है, बचाओ बचाओ आवाजें आ रही, किसको बचाओगे?
2: मैं तो सोच रहा हूँ बेस्ट फ्रेंड को ही बचाऊं.
0: क्यों?
2: क्योंकि ना सारे फ्रेंड कमीने होते हैं, वो बच जाएगा, वो कुछ भी करके गर्लफ्रेंड को तो बचा ही लेगा.
0: हर एक फ्रेंड कमीना होता है. ये बोले भैया सौरभ भैया, हमने कुछ नहीं बोला. गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, आपका नाम?
3: मेरा नाम श्वेता है.
0: श्वेता जी आप हंस रही थी कॉल पे आने से पहले.
3: मैं सोच रही थी क्या इनोवेटिव आंसर निकालना चाहिए. अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो खुद ही डूब जाना चाहिए क्योंकि इतना खराब सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि वो दोनों साथ क्या
0: जी
3: कर रहे हैं.
0: खुद ही डूब जाऊं.
3: बिल्कुल डूब जाइए, खुद डूब जाइए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए खुद को.
0: यार वैसे ना मैंने एक बात नोटिस की, मेरी माँ भी कहती होती थी मुझे जब मैं कोई गड़बड़ करता था, कांड करता, कहती तुझे ना चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए. मैं कहा मैंने पानी भरा चुल्लू में, मैं जब तक वहां पहुंचा मैं कहा ये तो बचता ही नहीं है, कहाँ डूबूं. बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपकी कॉल का. मैंने सवाल ये पूछा था कि भैया अगर आपका बेस्ट फ्रेंड और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो आप किसको बचाओगे, वाइस वर्सा फॉर द लेडीज. गुड इवनिंग फन एशिया, कौन बोल रहे?
4: अभिषेक.
0: अभिषेक कैसे हो आप?
4: बस बढ़िया.
0: आप जिम जाते हो?
4: नहीं जी, जिम नहीं जाता हूँ.
0: नहीं जाते?
4: बट स्विम करता हूँ.
0: स्विम करते हो? प्रोटीन शेक वगैरह तो नहीं ना पीते?
4: नहीं जी, प्रोटीन शेक नहीं पीता हूँ।
0: अच्छा, मैंने कहा अभिषेक हो तो शायद शेक पीता हो, पर कोई बात नहीं।
4: शेक मैं मेरे को
0: पर मुझे एक बात अच्छी लगी, मैं आज तक शेख से नहीं मिला पर मैं अभिषेक से रेडियो में मिल गया। शेख साहब, अभिषेक साहब, ये बताइए कि आपकी गर्लफ्रेंड और आपका बेस्ट फ्रेंड डूब रहा है, किसको बचाओगे?
4: जी, गर्लफ्रेंड को बचाऊंगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड डेफिनेटली ही विल अंडरस्टैंड इफ ही विल सर्वाइव।
0: अच्छा, अगर बचेगा तो, अगर बचेगा तो बोलेगा हाँ हाँ भाई ठीक ही किया तूने,
4: ठीक ही किया तूने।
0: चलो चलो अभिषेक, आई लाइक दैट आंसर। याद रखिएगा कि जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब अगर आप दे रहे हैं तो ये गिव अवे अर्विंग के लिए है, तो मेक श्योर यू कैन गो टू अर्विंग। रेडियो का वॉल्यूम लो अपना बढ़ा लो। कौन बोल लिया भाई? सॉरी यक्षा जी, कैसी हैं?
5: ठीक है, आप कैसे?
0: मैं बचपन में गिर गया था, कुछ चोटें हैं जो आजकल कभी कभी गर्मियों में ज्यादा बाहर आ जाती हैं, सिर में जो लगी हुई वो वाली। यक्षा जी, आपकी बेस्ट फ्रेंड और आपका बॉयफ्रेंड पानी में डूब रहे हैं, किसको बचाओगे?
5: मैं अपने आप को।
0: अपने आप को बचाओगी?
5: या।
0: पर आप तो साइड पे खड़ी देख ही रही हो, तो बची हुई हो, फिर क्या करोगी?
5: क्योंकि दोनों में से किसी को भी बाहर निकाला तो वो यही लड़ेगा कि मेरे को क्यों नहीं बचाया, उसको क्यों बचाया, तो इसलिए पहले अपने आप को बचा के फिर उनको किसी और को बुला के उनको बचाएंगे।
0: ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तब तक उनका काम हो जाएगा यक्षा जी, बट कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर योर आंसर, दैट इज ऑल द टाइम फॉर आई हैव द कॉल्स, बट आई थिंक श्वेता यू नेल्ड इट मैन। खुद ही को मैं खुद ही डूब जाऊंगी, चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगी कि मेरे ऐसे दोस्त और ऐसी मेरी दोस्तनी क्यों हुई। श्वेता जी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, गिव मी योर कॉल एंड आई विल टेक योर डिटेल्स, गेट यू दैट गिव अवे। व्हाइल वी टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, यूं गया और यूं आया वापस ऑन फन एशिया।
6: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
7: Official tax and finance partner, AG FinTax.
6: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
7: In association with Passion Health Primary Care.
8: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
9: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
10: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry, plus exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers, 10 glorious years and countless sparkling memories.
11: Ocho.
12: Hoko.
11: Ocho.
12: Hoko.
11: Ocho.
12: It's Hoko. अरे बस भी करो यार।
13: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
12: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
14: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरीड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
15: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
16: जीनी
17: हुकम मेरे आका,
16: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
17: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
17: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
16: और एंटरटेनमेंट,
17: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
16: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
17: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
18: ये तारा वो तारा हर तारा।
19: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
20: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
19: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: Absolutely, Bindas Bolo Ji. Naam Mar Bindas Bolo. Kya hal chal DFW? I hope that you're doing wonderfully well after a short commercial break. Break pe jaane se pehle kuch achha sa maza aaya yaar. I asked people ki bhai agar aapka boyfriend aur aapki आपका बॉयफ्रेंड और आपकी बेस्ट फ्रेंड डूब रही हो तो आप किसको बचाओगे. बहुत सारे जवाब आए पर एक जवाब यह आया श्वेता जी का कि मैं किसी को नहीं बचाऊंगी, मैं खुद डूब जाऊंगी कि ऐसा बॉयफ्रेंड और ऐसी सहेली मेरी मिली है. अब देखो मैम क्या करें, वो एयरटेल की ऐड थी ना, हर एक फ्रेंड टाणाना नाणाना, बाकी आप फिल इन द ब्लैंक खुद डाल लीजिए. आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock दिस इवनिंग, इट्स 6:06 इन द स्टूडियो क्लॉक. और आज एक सरप्राइज हमारे स्टूडियो में हमारे को ग्रेस करने आया जी, उनका नाम है एक रूप. वैसे इनके रूप अनेक हैं, बहुत जगह पे आपको आपने रेडियो पे इनको कई बार सुना होगा. एक रूप इधर आओ ना जरा, माइक पे हेलो करते हैं ना जरा. तो एक रूप को आपने बहुत बार सुना है हमारे रेडियो पे, हमारे स्टेशंस पे. एक रूप कैसी हैं आप आज की शाम?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे पहले बताया नहीं कि मैंने ऑन एयर आना है.
0: हम कोई अगर देखो बता के मैं कोई काम करता तो रेडियो वाले भी ना मुझे सुनते, बिना बताए काम करने चाहिए. बट एक रूप आर लवली टीम मेंबर हियर एट फनेशिया. एक रूप आप वीकेंड्स पे शो कर रही हैं?
1: हाँ जी, संडे को करती हूँ सुबह 7 से 10. आई जस्ट हैपन टू बी हियर फॉर सम वर्क एंड आई थॉट आई विल पॉप इन टू से यू हेलो. आपने तो मुझे बिल्कुल ऑन एयर ही बुला लिया.
0: देखो जी हम तो कहते हैं ना संग संग राही चलता रहे हमारे साथ, तो यही हमारा फंडा है, यही हमारा मॉडल है.
1: हम साथ साथ हैं,
0: हम साथ साथ हैं जी. चाहे आप संडे सुबह 7 से 10 हो, आपके में भी साथ है, मेरे में भी साथ है, 5 से 7 है, वहाँ 7 से 10 है. तो यही साथ का साथ है और इसी साथ के साथ हम भी साथ हैं. तो एक रूप जी हमारे से मिलने आई थी, हमने कहा चलो मौका अच्छा है, जरा एक रूप जी को भी इंट्रोड्यूस करें दोबारा से. बहुत सारे लोगों जो नहीं सुन पाते आपको, आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू लिसन टू हर सुबह 7 से 10 संडे को जो ये माहौल बनाती है. You will definitely fall in love with that. Thank you, Eko, for stopping by.
1: Thank you so much.
0: Public, सुनो ये गीत, मैं आया वापस, नो चिंता.

0: रफ्ता रफ्ता देखो देखो क्या हो गया, जब खेत जल गया या अब काहे का रोना, कहते ना जब चिड़िया चुग गई खेत, तो रफ्ता रफ्ता खफ्ता खफ्ता कुछ नहीं हो पाएगा भाई। इफ यू डू नॉट हैव योरसेल्फ कवर्ड विद द राइट इंश्योरेंस प्लान्स, बिजनेस हो, मॉर्गेज, आपके मॉर्गेज इंश्योरेंस हो या आपके एसेट्स की प्रोटेक्शन हो, इंश्योरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वी हैव आवर इंश्योरेंस पार्टनर जिनका नाम है सिनारा इंक, हुमैरा जुमानी, एंड शी इज गोना गिव यू अ क्विक अपडेट ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस। हुमैरा जी, अ वेरी गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग
0: मैम, आज का अपडेट प्लीज शेयर दैट विद आवर लिसनर्स।
1: यस, टुडेज अपडेट इज फॉर द पीपल हु हैज होटल्स एंड मोटेल्स, एंड इफ दे हैव मोर देन टू और थ्री होटल्स एंड मोटेल्स, वी डू हैव अ वेरी गुड पैकेज पॉलिसी फॉर देम व्हिच इंक्लूड्स एवरीथिंग, जनरल लायबिलिटी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, वर्कर्स कॉम्पनसेशन, अम्ब्रेला इंश्योरेंस, EPLI, cyber. They can contact me or my team and we can assist them. The number to contact is 972-863-7772, 972-863-7772, or they can visit my website, sinadainc.com.
0: That is sinadainc.com, 972-375-3327 is the number, 972-375-3327. I want to congratulate Shweta on winning that giveaway from Fusion Republic, now open in Irving, after making their waves and fan base in Richardson. They are now out there in Irving for you. Make sure to check them out. Here we go. Upen Patel came out with this track, Himesh Rashamiya ki thi si awaaz, and the movie was 36 Chinatown.

दशहीं आने वाली है। दशहीं का मतलब दशहरा आने वाला है। दशहरे पे पता है आपको क्या होता है, ताश बड़ी खेली जाती है। स्पेशली जो मेरी नेपाली दाई है ना, दाई और दाई की बूढ़ी सारी फैमिली मिलकर ताश बहुत खेलती है। और ताश जो है वो वैसे भी मर्दों का बड़ा शौक होता है ताश खेलने का। मैंने पूछा एक दिन, मैंने कहा भाई साहब एक चक्कर क्या है, आप लोग ताश क्यों खेलते हो इतनी? कहता यार देख, वैसे तो बीवी हमें नचाती है राइट, बट ताश खेलने के बहाने बेगम को हम भी नचाते हैं अपने हाथों की उंगलियों पे। और जान के मैंने देखा है कि जब बेगम फेंकनी होती है ना नीचे डेक पे जहां ताश खेलते हैं, जोर जोर से पटकते हैं। हद हो गई यार। बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। चलो मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ भी सकता हूँ यार, कोई बात नहीं। देखो एक बंदे ने, पता है आपको, एक बंदे ने अपनी किताब में लिखा था कि आदमी को भी बोलने का हक होना चाहिए, पर देख लो वो भी बेचारा लिख ही पाया। वेलकम बैक है मेरा एक बार फिर आपके कानों में, क्योंकि आप मुझे सुन सकते हैं और मैं आपको नहीं सुन सकता, बट मैं आपके लिए बैठा हूँ जी, गाने आपके लिए चुन सकता हूँ, अच्छे अच्छे चुनूंगा और रखूंगा आपको मस्त मगन ऑल द वे टिल 7 o'clock दिस इवनिंग। एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन NRI वेल्थ। दीप्ति वर्मा इज हर नेम एंड वी विल बी ज्वाइनिंग विद हर वेरी शॉर्टली। फॉर नाउ लेट्स टेक यू टू दिस अगला गीत जो कि आपके लिए लाइन अप करके रखते हैं हम जी, अच्छे अच्छे गीतों के साथ रखते हैं आपको कंपनी।

विवेक आनंद ओबेरॉय इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, जिसको हम बोलते हैं जी विवेक ओबेरॉय, बोर्न ऑन टुडेज डेट 3rd of September 1976, एन एक्टर. माय मॉम यूज्ड टू रियली लव हिम, एंड उसकी वजह यह है कि शायद शी यूज्ड टू लाइक सुरेश ओबेरॉय इज वेल, सुरेश ओबेरॉय हिज फादर इज वेल, बट आई थिंक ही वाज, ही इज अ ग्रेट एक्टर, एंड कंपनी में जो काम किया इन्होंने दैट वाज डेफिनेटली काबिले तारीफ, एंड उसके लिए मिला 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर दैट मूवी इज वेल. एंड देन केम सम कॉमेडीज, मस्ती 2004, हॉरर फिल्म काल आई थी, शूट आउट एट लोखंडवाला, एंड ओमकारा इन 2006, एंड फॉलोड बाय कुर्बान. बट देन थोड़ा प्रॉब्लम जो इनकी सल्लू भाई से हुई, उसके बाद ये फिल्मों में नजर आना बंद हो गए. बट आई थिंक ही वॉज अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट एक्टर, एंड ही स्टिल अ ग्रेट ह्यूमन बींग, एंड आई विश दैट ही कम्स बैक. ही इज सीन ऑन OTT, एंड आई एम लुकिंग फॉर सम मूवीज फ्रॉम हिम दैट वी कैन एंजॉय अगैन. वी आर विशिंग दिस वंडरफुल जेंटलमैन अ वेरी हैप्पी बर्थडे. विवेक ओबेरॉय, बॉर्न ऑन टुडेज डेट, एज्ड 50 ईयर्स ऑफ एज, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ, एंड ऑफकोर्स समबडी हुज कम्स फ्रॉम द लाइन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज सुरेश ओबेरॉय, एज हिज फादर हु वॉज एन एक्टर एज वेल. अ वेरी हैप्पी बर्थडे मिस्टर विवेक आनंद ओबेरॉय फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास. और अगर इनकी बात की है और ये गाना ना हो तो बर्थडे अधूरा है यार. खुद अपनी

0: Once again, wishing Vivek Oberoi a very happy birthday. This was the title track from the movie Sathiya, which was with Rani Mukherjee and Sonu Nigam Saab ki awaaz. A.R. Rahman Saab ka music. Yaad rakhiyega ki if you're in Plano looking for some great food, Signature Cuisine has all the right flavors. Ye kahan pe located hai? Spring Creek or Alma, ya Spring Creek and 75. Bahut zabardast nihari, jo main kha chuka hun. Sizzling grills, crispy fried chicken and mouth-watering paratha. Saath saath banquet hall hai aapke liye. Make sure to check out signaturecuisine.net on the website.
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
2: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराटा चिकन टिक्का न्यू लव.
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: Hey, tumne kabhi insurance liya?
7: Liya.
6: Kabhi policy samajh bhi aaya?
7: Nahi aaya.
6: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
8: Visit www.sanadainc.com today.
9: We need to talk.
10: अब क्या हुआ?
9: Nothing. It's not you.
10: Oh no.
9: It's the distance.
10: Distance? We live 10 minutes apart.
9: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
11: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: Aji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
13: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन .com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन .com और कॉल 469-734-3338. 469-734-3338. माई फैमिली होम लोन .com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

अगर आप लोग आर्लिंगटन मैन्सफील्ड या ग्रैंड प्री में रहते हैं और आपकी बीवी बोलती है रात को कि भाई मुझे वो अंकल चिप्स ला दो ना, तो आपका ड्रामा शुरू हो जाता है। इतनी दूर ग्रोसरी स्टोर है, कौन जाएगा? अब वो ड्रामा नहीं कर सकता भाभी, आपके बिल्कुल पास आ चुका है ग्रोसरी स्टोर, उसका नाम है हिमालयन बाजार। ठीक है जी, ग्रैंड प्रेरी, आर्लिंगटन, मैन्सफील्ड, सबके लिए सुख की घड़ियां अब शुरू हो चुकी हैं, बिकॉज यू गॉट हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी फॉर यू, ऑल अंडर वन रूफ, यानी कि साउथ एशियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, सब्जियां, ताजा फल, सब कुछ आपको मिलेगा, प्रीमियम हलाल मीट्स, हॉट स्नैक्स एंड एवरीडे एसेंशियल्स। अब हॉट स्नैक्स आप पूछोगे क्या मतलब, हॉट मतलब गर्म, स्पाइसी वाली नहीं। हॉट स्नैक्स में क्या क्या मिलेगा जनाब? आपको मिलेगी चाय, कॉफी, पकौड़े एंड मेनी मोर आइटम्स दैट दे मेक फ्रेश इन देयर स्टोर एवरी इवनिंग। एंड अगर आप उनके 5 माइल के रेडियस में रहते हैं तो लेडीज $50 की ग्रोसरी पे फ्री डिलीवरी मिलेगी। हाँ जी, $50 की ग्रोसरी, फ्री डिलीवरी, 5 माइल रेडियस। एड्रेस उनका आप मेरे से ले लीजिए, 5103 मैग्ना कार्डा बुलेवार्ड, 5103 मैग्ना कार्डा बुलेवार्ड इन ग्रैंड प्रेरी। अगर आपके पास ये लिखने का भी टाइम नहीं है तो गूगल कीजिएगा हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी, पुट योर जिप कोड एंड सी हाउ फार यू आर। इफ यू आर विद इन 5 माइल्स, $50 की ग्रोसरी घर पे मुफ्त डिलीवर हो जाएगी, चिंता की बात ही नहीं है। एंड फॉर माई नेपाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रामरो, आपके लिए लेके आए हैं जी वो बफ एज वेल, फ्रेश वाटर बफ इज अवेलेबल विद हिमालयन बाजार। तो चाहे हलाल मीट हो, ग्रोसरी हो या हो फ्रेश प्रोड्यूस, हिमालयन बाजार इज द प्लेस यू नीड टू रिमेंबर। आज के दिन जनाब एक बर्थडे और है, आओ ललिता, शक्ति दादा जी, शक्ति कपूर साहब का जन्मदिन आज के दिन होता है। डिड यू नो कि उनका बर्थ नेम एक्चुअली सुनील कपूर था, एंड ही चेंज्ड इट टू शक्ति कपूर। आओ ललिता शक्ति, बॉलीवुड फिल्मों में बहुत सारा काम, 700 से भी ज़्यादा फिल्में, और जो टीम इनकी असरानी साहब और कादर खान साहब के साथ थी वो एक ऐसी ईविल टीम थी जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अच्छा, इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस में भी आ चुके हैं 2011 में, एंड प्रूव टू हिज चिल्ड्रन दैट ही कैन स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल, ये इनका चैलेंज था वहाँ पे। एंड शक्ति, मेरा नाम, हाँ जी, तो वो आज जन्मदिन अपना मना रहे हैं जी। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सुनील कपूर, AKA शक्ति कपूर साहब, बॉर्न इन दिल्ली, नॉर्थ इंडियन बॉय, अंकल एंड द फादर ऑफ श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, पापा को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, स्पेशली श्रद्धा जी, आई रियली लव योर फादर, बिकॉज वो ना होते तो आप ना होती। हैप्पी बर्थडे शक्ति दादा।

चिक पक लादा बाबू आएंगे, लादा बाबू आएंगे. शक्ति कपूर साहब विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड दिस मूवी वाज टेकन फ्रॉम वन ऑफ दिस मूवी नहीं, दिस सॉन्ग वाज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द मूवीज जिसका नाम राजा बाबू ही था भैया. एंड जाते जाते आपको बता दूं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज नियर यू एंड दे आर ऑफरिंग यू अ ग्रेट ऑफर मैन. अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, हम सबको ये चिंता सताती है कि इंश्योरेंस नहीं होगी तो बिल बड़ा आएगा, क्या करेंगे भाई. तो आपको पहले बता दूं कि विद Passion Health Primary Care, they have a plan for you which might be your rescue from all of these insurance companies. They have a plan which is called the Affordable Primary Care offer, which is called the Passion Health Direct. $85 a month can get you primary care visits, follow-up, preventive care, chronic disease and medication management. साथ साथ telehealth की अगर जरूरत पड़ेगी, they give you that. Care coordination की जरूरत है, वो भी आपको मिलेगा. And 20% off savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic service. I think that's a great offer. $85 a month में आपको आपके hospital visits cover होंगे, follow-up cover होगा, preventive care cover होगा, chronic disease cover होगा और medication management होगी. I think that is a great deal. Call or text 214-666-6259. That's 214-666-6259. PassionHealthPhysicians.com is the website. And if you just Google Passion Health Physicians, you will see one close to you because they've got multiple locations in town. Their passion, your health, our community. The program is not a health insurance. Make sure to check the eligibility for you when you get with them. For now, it is me signing off. Kyunki mere baad aayegi ji EP and jo bhi aata hai usko jana hai, jo shuru hota hai usko khatam hona hai. Just like my show. And jaate jaate aapko ye batana chahta hoon ki, you know, hum baaki saari cheezein kar lete hain. घर की बिल टाइम पे देते हैं, खाना टाइम पे मेक श्योर करते हैं कि हमारी फैमिली को पहुंच जाए, बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए. आपका क्या होगा भैया? जी हाँ, आप जो बाकियों की खुशियों के लिए काम करते रहते हो, मेक श्योर करते हो कि मम्मी डैडी खुश हों, आपके बच्चे आपसे खुश हों, बीवी खुश हो, क्या आप अपने आप से खुश हो? क्या आपने अपने आप को वो टाइम दिया जो आपको चाहिए, कि अभी भी प्रेशर्स में जी रहे हो? उसने बुलाया है यार, जाना पड़ेगा, ये है, डेडलाइन है, करनी पड़ेगी. करते करते करते करते उम्र निकल जाएगी भैया, और एक दिन खड़े होकर सोचोगे कि मैंने अपने लिए क्या किया, या मैं वाकई खुश रहा, क्या मैं अच्छी ज़िंदगी जिया? ये सवाल क्यों आने दोगे यार? और आपको एक बात बताऊं कि जब जब आप अपने मन को मारोगे ना, व्हेन यू सैक्रिफाइस योर जॉय फॉर समबडी एल्स, इट क्रिएट्स अ लिटल, समझ लें, दाना हो जाता है आपके अंदर, ठीक है, मन में, और वो दाना बढ़ता बढ़ता बढ़ता बढ़ता आपके दिल को कवर कर लेगा भैया. तो ऐसा ना होने दें, बिकॉज योर फैमिली, योर किड्स, योर मदर, योर वाइफ, एवरीबॉडी इज रिलाइंग ऑन हु, यू नो दैट, दे रिलाइंग ऑन यू. और अगर आप ही अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट मेक दोज चॉइसेस विच आर गुड फॉर यू. Be that taking a break, be that going on a holiday, be that picking up that phone, talking to that friend for an hour, be that visiting your friend who you've been talking about visiting. Weekend pe doston ke saath ghumna jana chahte ho, jao yaar. Make sure you are happy, and trust me, when you make yourself happy, everything around you, your family, your love life, your kids, your job, everything is gonna be a little more meaningful and a little more joyful. With that, it is Marvin Das signing off for this week. I'll see you on Monday. Us upar wale ne diye ek aur zindagi ki taraf mauka. To agle hafte 5 se 7 main rahunga ji aapke saath saath on your favorite show jiska naam hai The Bindas Show with your very own Banda Bindas, Marvin Das. Duaon mein mujhe yaad rakhiyega. I'll do the same, and leaving you with this lovely number. Good night.